ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने

0: छापने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, बीते हुए कल की चिंता आज की रोशनी को धुंधला कर देती है। सच्ची दौलत अच्छे रिश्ते और शुद्ध विचार हैं। इसलिए हर सुबह को एक नए मौके के रूप में देखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ। आज आप सुनिएगा इस पाठ का भाग 201। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार है शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का 5वां भाग। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हमेरा ही प्यार के। 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार सुनील दत्त पर। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। बांसुरी वादक पारसनाथ से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे तय करेंगे सुरीला सफर। पर सुनिए सदा बहार नगमे और 3 बजे सुनिएगा सखी सहेली। शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए आज के मेहमान में डॉक्टर सुनीता दुबे से यूनुस खान की बातचीत।

प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। शाम 7:00 सुनिए जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए राग अनुराग। रात 8:00 सुनिए हवा महल में नाटक यादों की परछाई, यादों की परछाइयां का तीसरा भाग। लेखन है सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशन है दीना नाथ का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9:00 आपके लिए। रात 10:00 सुनिए छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। 6:35 होने वाले हैं, आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूं। मुझे श्री राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 201।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें चर्चा की जा रही है स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों के बारे में। कल आपने सुना था राग वृंदावनी सारंग, आज आपको सुनवा रहे हैं राग धनाश्री।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को सादर प्रणाम। पिछली कड़ी में मैं आपको 19वीं शताब्दी के महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा हिंदी भाषा में रचित बंदिशों के बारे में बता रही थी। आज उनकी एक और कृति पेश करती हूँ जो राग धनाश्री में है। इसकी शैली भी कुछ ध्रुपद जैसे है। साहित्य इस प्रकार है। शीस गंग भस्म अंग अर्धंग गौरी संग, यानी कि बंदिश शिव जी की स्तुति में है। वैसे तो स्वाति तिरुनाल विष्णु भक्त थे और अधिकतर कृतियां पद्मनाभ स्वामी की स्तुति में है। तिरुवनंतपुरम में जो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है वह बहुत ही मशहूर है।

और महाराजा के परिवार के सदस्य सदियों से यहाँ की विशेष पूजाओं में भाग लेते आए हैं। एक और बात भी बताना चाहूँगी, हिंदी भाषा में महाराजा स्वाति तिरनाल ने जो कृतियाँ बनाई उनके अलावा 42 श्लोक, एक नवरत्न मालिका, 4 राग मालिकाएँ, 39 संस्कृत बंदिशें, ये सब भी उन्होंने बनाई। एक बंदिश तो कन्नड़ा भाषा में भी है और एक है मलयालम में। एक और है मणि प्रवालम, अर्थात अनेक भाषाओं के मिश्रण से भी बनाए हैं। इतना सब उन्होंने 34 वर्ष की आयु में ही बना ली थी। तो आइए अब आपको सुनाती हूँ धनाश्री राग में एक ध्रुपद शैली में बनाई हुई कृति। धनाश्री राग भीमपलास से मिलता जुलता है और स्वर दोनों में एक ही जैसे लगते हैं। तो सुनिए शीश गंग, स्वाति तिरनाल महाराजा की कृति।

ये थी धनाश्री राग में महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित एक ध्रुपद शैली की बंदिश। धनाश्री राग ज्यादातर भीमपलास राग से मिलता जुलता है। अब सुनिए एक फिल्म संगीत जो राग भीमपलास के स्वरों पर आधारित है।

0: राग भीम पलासी पर आधारित ये गीत था। फिल्म राम राज्य से, आवाज थी सरस्वती राणे की। कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग धनाश्री। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

0: प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है।
1: ता थी थी तत आ थी थी तत मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग दिग नाथ दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग द

लहके मृदंग ठनका झट झट झट झट नागिन तेज तेज सगन नदादा किट झट झट झट झड़न मच सग सगन का सगन का किट सटिक सग सगन का जी सगन नदा ताधा किट सग सगन का ताधगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे

तमन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे परिवार फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल सलिल चौधरी का संगीत।

आतिम ताई फिल्म से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाजों में ये गाना राजा मेहंदी अली खान का की बोल थे और एस एन त्रिपाठी का संगीत।

हातिम ताई फिल्म से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ों में ये गाना। राजा मेहंदी अली खान का की बोल थे और एस एन त्रिपाठी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे फंटूज फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: मैं एक

अभी सुन रहे थे शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाज में गाना केदार शर्मा के बोल रोशन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते रोहता सुनने वाले सभी श्रोताओं को कुसुम का प्रातःकालीन नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ। संस्कारों से बड़ी कोई वसीहत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं।

और अब आइए आज नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1906 में महाराष्ट्र के पुणे में मराठी भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए महाराष्ट्र साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन सन 1937 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दुनिया के सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध गोल्डन गेट पुल का उद्घाटन किया गया था। और आज ही के दिन सन 1951 में मुंबई में प्रसिद्ध तारा पोखाला एक्वेरियम यानी कि मत्स्यालय का उद्घाटन किया गया था। आज ही के दिन सन 2011 में ग्लोबल इंटरनेट सर्च इंजन गूगल अब भारतीय शहरों के हर गली नुक्कड़ की तस्वीरें इंटरनेट पर दिखाने जा रहा है। गूगल अर्थ के जरिए जहां अब तक आप धरती के विभिन्न हिस्सों की सैटेलाइट तस्वीरें देख सकते थे, वहीं गूगल के नए फीचर स्ट्रीट व्यू से गली नुक्कड़ तक को देखा जा सकेगा।

और अब जाइए जानते हैं आज के दिन जन्मे प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। तो आज ही के दिन सन 1894 में जन्म हुआ ख्याति प्राप्त आलोचक तथा निबंधकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का। सन 1931 में जन्म लिया प्रसिद्ध मलयाली कवि और गीतकार ONV कुरुप ने। और आज ही के दिन जन्म हुआ हिंदी के कवि, पत्रकार एवं पत्रकारिता के

प्रख्यात हेमंत जोशी का। सन 1962 में आज ही के दिन जन्म लिया है प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर एवं खिलाड़ी कमेंटेटर रवि शास्त्री।

और अब जाइए जानते हैं उनके बारे में जो आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। तो आज ही के दिन सन 1964 में निधन हुआ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का। सन 2008 में आज ही के दिन निधन हुआ ऑस्कर विजेता निर्देशक सिडनी पोलाक का। और 2009 में भारतीय राजनीतिज्ञ एवं अरुणाचल प्रदेश और असम के राज्यपाल रहे लोकनाथ मिश्रा का निधन आज ही के दिन हुआ।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी कसे क्लिक में अरे वाह
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: और अब आइए जानते हैं आज रोहतास जिला में क्या है खास पर जी हाँ रोहतास जिला गौरवशाली इतिहास विशाल किलो खूबसूरत प्राकृतिक झरनों और सबसे उपजाऊ कृषि भूमि के लिए बेहतर है बिहार का एक खास और समृद्ध जिला कहलाता है और इसे हम धान का कटोरा भी जानते हैं। विस्तृत पर बात करें तो सबसे पहले ऐतिहासिक स्थल और किले पर आते हैं तो शेर शाह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण ये विशाल मकबरा एक कृत्रिम झीलों के बीचों बीच स्थित है सासाराम में आप इसे देख सकते हैं दूर दूर से सैलानी इसे घूमने आते हैं और बहुत ही खूबसूरत कहकर जाते हैं रोहतास जिला गढ़ किले की बात की जाए तो कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित ये भारत के सबसे दुर्गम और ऐतिहासिक किलों में से एक है कभी राजा मान सिंह के इस समय में ये बिहार और बंगाल की संयुक्त राजधानी हुआ करता था हसन खान सूरी के मकबरा की बात की जाए तो शेरशाह सूरी के पिता का मकबरा है जो प्राचीन कला वास्तुकला के लिए जाना जाता है शेरगढ़ किला की बात की तो यह किला अपनी गुप्त सुरंगों और सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खास है अब अगर रोहतास ज़िले के प्राकृतिक और पर्यटन स्थल की बात करें तो कैमूर की पहाड़ियों से घिरे होने के कारण रोहतास में कई अद्भुत जलप्रपात है जो मॉनसून और सर्दियों में पिकनिक के लिए बेहतरीन जगह हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं माझर कुंड और धुआं कुंड जो सासाराम में स्थित है खूबसूरत झरने जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं तुतला भवानी जलप्रपात हरी भरी वादियों और चट्टानों के बीच गिरता हुआ विशाल झरना अपने आप में अद्भुत नज़ारा है कशिश जलप्रपात की बात करें तो जंगल और पहाड़ों के बीच बसा ये शांत और प्राकृतिक पिकनिक स्पॉट है

और अब आइए धार्मिक स्थल की बात की जाए तो रोहतास ज़िला में कई सारे धार्मिक स्थल हैं। बात करते हैं माँ तारा चंडी मंदिर जो सासाराम में स्थित है, 51 शक्तिपीठों में से एक जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। गुप्ता धाम की बात की जाए तो कैमूर की पहाड़ियों में स्थित एक प्राकृतिक गुफा मंदिर जहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। रोहतास ज़िला में सिखों का ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी है जहाँ पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी स्वयं आए थे अपने परिवार के साथ। आज वो गुरुद्वारा चाचा फग्गूमल जी के नाम से जाना जाता है।

तकनीकी और अन्य खास चीज़ों की बात की जाए तो इंद्रपुरी बांध, जिसे इंद्रपुरी के नाम से जानते हैं, सोन नदी पर बना यह बराज सिंचाई और शानदार नज़ारों के लिए जाना जाता है। छाया घड़ी की बात करें, यानी कि धूप घड़ी की, तो डेहरी में स्थित ब्रिटिश कालीन घड़ी जो आज भी धूप की मदद से सही समय बताते हैं। और अब कृषि और अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो हमने पहले ही कहा कि इसे बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है और रोहतास ज़िले की मिट्टी बेहद उपजाऊ है। साथ ही यहाँ के कैमूर पठारी क्षेत्र में चूना पत्थर की भारी उपलब्धता है, जो सीमेंट उद्योगों जैसे डालमिया नगर और बंजारी का मुख्य आधार रही है।

और अब संस्कृति और शिक्षा पर बात करें तो रोहतास शिक्षा के मामले में बिहार के सबसे अग्रणी जिलों में से एक है। यहाँ की मुख्य भाषा भोजपुरी और हिंदी है। यहाँ का स्थानीय खान पान जैसे लिट्टी चोखा और खुरमा पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। रोहतास से जुड़ी विस्तृत जानकारी और पर्यटन स्थलों के संचालन के लिए आप बिहार पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट भी देख सकते हैं। एक ही नहीं, बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर आप अद्भुत नज़ारों के साथ साथ खुद को बेहद ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखेंगे। तो एक बार रोहतास ज़िला ज़रूर आएँ। और अब आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

और अब आइए रुख करते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। बिहार में टीचरों की छुट्टी पर 31 मई तक रोक, जमीन देने वालों के नाम पर महाविद्यालय, सम्राट चौधरी। बिहार में शिक्षकों की छुट्टी पर 27 से 31 मई तक रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि ग्रीष्मावकाश से पहले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सभी शिक्षक ग्रीष्मावकाश शुरू होने से पहले अंतिम कार्य दिवस तक विद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इस दौरान छात्रों को विषयवार गृह कार्य दिया जाएगा और उसकी प्रविष्टि डायरी में भी दर्ज करनी होगी छात्रों की। विभागीय निर्देश में कहा गया है कि हाल ही के दिनों में बड़ी संख्या में शिक्षक अवकाश आवेदन दे रहे हैं, ऐसे में ग्रीष्मावकाश से पहले विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।

अगली सुर्खी, बिहार के 24 जिलों में होगी बारिश, दक्षिण पश्चिम के 8 जिलों में भीषण गर्मी। बिहार में पिछले एक सप्ताह से मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी तो दूसरी ओर आंधी बारिश से जनजीवन को प्रभावित कर रही है। सोमवार को दोपहर बाद से मंगलवार की सुबह तक 25 जिलों में भारी से हल्के स्तर की बारिश हुई। इस दौरान कटिहार के प्राणपुर में 132.8 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई। पूर्वा का प्रवाह होने के बावजूद मंगलवार को राज्य के 4 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। भभुआ में 43.6, डेहरी में 42.4

और अगली सुर्खी, पटना गया और दरभंगा में रनवे विस्तार, 5 और एयरपोर्ट पर फ्लाइट का टेंडर जून में, हाई लेवल बैठक में। बिहार में हवाई सेवा को और विकसित करने के लिए दिल्ली में मंगलवार को हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट पर रनवे का विस्तार किया जाएगा, साथ ही 5 छोटे एयरपोर्ट को शुरू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर, सहरसा समेत 5 हवाई अड्डों से छोटे विमानों के संचालन का टेंडर अगले महीने से शुरू होने पर भी सहमति बनाई गई है।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र और सुनते हैं समाचार प्रभात कुछ ही पलों में।

0: देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
5: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
4: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
6: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर

0: शंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
1: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमेरिकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का

0: चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
2: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्म

0: चाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

इसी के साथ देशभक्ति गीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपकी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कुसुम का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आइए लेते हैं कार्यक्रम का पहला पत्र, क्योंकि आपके ढेर सारे पत्र आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में, तो बिना वक्त गवाए लेते हैं कार्यक्रम का पहला पत्र। और ये पत्र आया है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से। हमारे जो लिसनर है वो है भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिक्की, रिंकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से है जयंत कुमार बैरागी। और हमारा ये पत्र है थाना चांद भेलाडी ग्राम श्री हीरा से। हमारे श्रोतागण हैं शंभू चौरसिया टेंट वाले, राजू चौरसिया, गोलू चौरसिया, प्रभावती देवी, प्रियंका कुमारी, भरत बाबू चौरसिया। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब आइए लेते हैं कार्यक्रम का अगला पत्र, जिसे भेजा है थाना मोड़ गड़नोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबू निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना शहबाज। ये हमारे श्रोतागण हैं जो नियमित भी हैं, और हमारे नियमित श्रोता गोकुल चौक गंगजला सहरसा से भी हैं, और जिनके नाम हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार, राजेश रंजन, ओम कुमार विद्यार्थी, कुंजेश कुमार, बुल्कीवाली फलना झा, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी अर्थव कुमार, संजय कुमार परदेसी। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

इस गीत को सुनना चाहा था रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और ये हमारे श्रोता हैं सरगुजा मेन पार्ट से, सोनिया थापा, सोमन थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वाली डोम, कुमारी बबलू डोम, जेल रोड मथुरा से है वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे सुनना चाहा है महादेव घाट अमलेश्वर से, हमारे श्रोतागण जो है उनके नाम हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारुणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश कुमार। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे सुनना चाहा है ग्राम पोस्ट खुरमाबाद जिला रोहतास से। श्रोतागण है लक्ष्मण चौरसिया, सन्नी कुमार चौरसिया, भरत प्रसाद चौरसिया, उषा देवी, प्रियंका कुमारी, कुसुम देवी, मुन्नी देवी, समस्त चौरसिया परिवार। और ये पत्र आया है नगर पालिका भभुआ से बैजनाथ प्रसाद चौरसिया, कृष्णा प्रसाद चौरसिया, विद्यावती देवी, चंद्रावती देवी, किरण देवी तथा मनमोहन चौरसिया। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

और इसी के साथ कार्यक्रम पसंद आपकी यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगा हर्ट्स पर। और अब आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कृपया करें थोड़ा सा इंतज़ार।

0: AIR 90.
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिला मुख्यालयों को फोर लेन से जोड़ने का दिया निर्देश। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर अब नगर निकायों में भी आयोजित होंगे सहयोग शिविर।

केंद्र सरकार ने किउल झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी और पूर्णिया मधेपुरा मधुबनी बेगूसराय और खगड़िया समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिला मुख्यालयों को फोरलेन सड़क से जोड़ने का निर्देश दिया है। पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि राज्य के सुदूर इलाकों से 5 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी आवश्यक है। उन्होंने राज्य के पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक विरासत केंद्रों, औद्योगिक कॉरिडोर, विशेष कृषि उत्पाद क्षेत्र और महत्वपूर्ण बाजारों तक भी बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन पुल का काम जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में लोक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के तहत मेडिकल कॉलेजों का विकास किया जाएगा। इसके तहत नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, साथ ही चिन्हित मेडिकल कॉलेज विकसित भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा सुनिश्चित कराने और मरीजों के अनावश्यक रेफर किए जाने पर यथासंभव रोक लगाने के निर्देश दिए। राज्य के महाविद्यालयों का देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों से करार होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च शिक्षा विभाग को इस संबंध में निर्देश दिया है। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि इस पहल से दूसरे राज्यों से भी छात्र बिहार आकर शिक्षा हासिल करने के लिए उत्सुक होंगे। उन्होंने 1 जुलाई से 2911 प्रखंडों में स्नातक की पढ़ाई शुरू कराने का निर्देश दिया, जहां पहले से डिग्री कॉलेज नहीं है। मुख्यमंत्री ने नए महाविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति के लिए कमिटी का शीघ्र गठन कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर अब राज्य के नगर निकायों में भी सहयोग शिविर की शुरुआत होगी। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर शिविर की तैयारी का निर्देश दिया है। पंचायतों की तरह नगर निकाय क्षेत्रों में भी प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगेंगे। केंद्र सरकार ने किउल झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 961.71 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह परियोजना बिहार में रेल अवसंरचना को नई मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने इस रेल लाइन को स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया है। पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार होगा। नई दिल्ली में परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी अस्थायी संसदीय समिति और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू के साथ बैठक में इस पर सहमति बनी। समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि बैठक में बिहार के विभिन्न हवाई अड्डों से जुड़े मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई। श्री झा ने बताया कि राजगीर में हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। सोनपुर रेल मंडल की मंडल संसदीय समिति की बैठक हाजीपुर में संपन्न हुई। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी, वैशाली सांसद मीना देवी, कटिहार के सांसद तारिक अनवर और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा शामिल हुए। बैठक में रेलवे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने और ऊर्जा संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के अधिकारी अगले 6 महीने तक सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि अब राज्य और जिला स्तरीय बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी, साथ ही जिला स्तरीय समीक्षात्मक और समन्वय बैठकों का आयोजन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस

के माध्यम से ही करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि विभागीय स्तर पर अधिकारियों के लिए कार पुलिंग व्यवस्था को लागू किया जाए। यह व्यवस्था राज्य स्तर के साथ साथ जिलों में भी लागू की जाएगी। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इबोला वायरस के बढ़ रहे प्रसार को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी एसओपी में विदेश यात्रा से आने वाले लोगों की निगरानी बढ़ाने, एयरपोर्ट के पास क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इबोला वायरस से पीड़ित मरीजों का तुरंत इलाज शुरू करने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों, सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने को कहा गया है। केंद्र सरकार की पहल ज्ञान भारतम मिशन के तहत चल रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वे में बिहार देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है। देश भर में अब तक हुए 5,500 सर्वे में से बिहार में 1,000 सर्वे कार्य पूरा हुआ है। वहीं राज्य में अब तक 8 लाख से अधिक पांडुलिपियों की पहचान की गई है। पांडुलिपियों की पहचान में बिहार देश में 5वें स्थान पर है। राज्य के कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सर्वे का काम 15 जून तक चलेगा। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1983 में मुजफ्फरपुर में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। यह घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी थी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और कई लोग घायल हुए थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में जनजातीय करिमा उत्सव के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लाभुकों के साथ संवाद करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन भी मौजूद रहेंगे। पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय और खगड़िया समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। ओलावृष्टि के कारण खेतों में लगी फसल के साथ साथ आम और लीची की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है। इधर मौसम विभाग ने आज भी राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के मधेपुरा एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर राज्य के दक्षिणी हिस्सों के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों

0: के दौरान 43.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। डेहरी का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गया एयरपोर्ट पर कल सेना के एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी का संकेत मिलने के बाद पायलटों ने आपात लैंडिंग करवाई। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 सैन्यकर्मी सुरक्षित हैं। सेना का हेलीकॉप्टर रांची से बिहटा एयरबेस आ रहा था। मरम्मत के बाद हेलीकॉप्टर रांची के लिए रवाना हो गया। पटना के IGIMS में आयुष्मान घोटाले की जांच के लिए पुलिस और संस्थान की ओर से 2 अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। IGIMS ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो घोटाले के हर बिंदु पर जांच करेगी। इधर पुलिस ने इस मामले के आरोपी 4 संविदा कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए SIT गठित की है। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत पटाने पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण पुल पर भारी वाहनों का परिचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। राष्ट्रीय उच्च पथ के औरंगाबाद प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता तुलसी प्रसाद ने बताया कि भारी वाहनों के परिचालन के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है।
1: इसका वैकल्पिक मार्ग है जो झारखंड से गाड़ी आएगी वो तेतरिया होते हुए नबीनगर से होते हुए बारून चल जाएगी और दूसरा रूट है जो हल्की गाड़ी और आएगी तो अम्बा होते हुए नबीनगर से बारून चली जाएगी। अभी चूंकि सब प्राकरण तैयार किया जा रहा है, प्राकरण प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है। प्राकरण होते ही जैसे टेंडर हो जाएगा उसका 2 महीना का दिया गया, 2 महीना में कम्प्लीट होना चाहिए।
0: पटना के ज्ञान भवन में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय रोजगार मेले के दूसरे दिन कल 3,659 युवाओं का चयन हुआ। इधर अररिया में आयोजित रोजगार मेले में 42 अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों ने नियुक्ति पत्र सौंपा। पटना के मुसल्लापुर थाना क्षेत्र के सैदपुर नहर रोड स्थित नंदनगर कॉलोनी के पास से पुलिस ने 3 छात्रों को मादक पदार्थ स्मैक और हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के सासाराम थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक CRPF जवान से 5 लाख रुपए लूट लिए। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्य के नगर निकायों में भी लगेंगे सहयोग शिविर। दैनिक जागरण लिखता है, विधान परिषद की 10 रिक्त सीटों के लिए 18 जून को मतदान। प्रभात खबर की सुर्खी है, केंद्र सरकार ने जनसांख्यिकी परिवर्तन पर गठित की उच्च स्तरीय समिति। दैनिक भास्कर ने लिखा है, फिजूल खर्ची रोकने और ईंधन बिजली की बचत के लिए बिहार सरकार ने 6 फरमान जारी किए। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, दिल्ली से बिहार आ रही बस पलटी, बिहार के दारोगा और कैदी समेत 6 की मौत। आज अखबार लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दिया निर्देश, PPP मॉडल पर विकसित होंगे मेडिकल कॉलेज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का दिया निर्देश। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर अब नगर निकायों में भी आयोजित होंगे सहयोग शिविर। केंद्र सरकार ने किउल झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी। और पूर्णिया, मधेपुरा, मधुबनी, बेगूसराय और खगड़िया समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक

0: माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
1: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
0: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: और इस गीत के बाद
7: छाया की

0: It has undergone 9 revisions. Cully with 903 rating points is 34 points behind Smith 900.
1: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब आइए एक नज़र डालते हैं आज के कार्यक्रम विवरणी पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मलिका। 9:30 पर हम चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम को। 10:05 पर होगा पुनर्नवा कार्यक्रम।

भोजपुरी एल्बम लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी आप सुनेंगे 10:30 पर, और सुबह के 10:45 पर भोजपुरी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम होगा रसधार। 11 बजे हम चलेंगे पुनः विविध भारती और सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम को।

वंदन कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या के 5:10 पर, जिसमें हम आपको भक्ति गीत सुनवाएंगे। महिला बहनों का कार्यक्रम होगा घर आंगन संध्या के 5:30 पर। संध्या 6 बजे हम लेकर आएंगे भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम।

गांव घर ग्रामीण कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:10 पर और संध्या 6:40 पर भोजपुरी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सांझे गीत में आप भोजपुरी गीतों का आनंद लेंगे। संध्या 7 प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस आप सुनेंगे और 7:15 पर गुड इवनिंग रोहतास में सांध्यकालीन सूचना हम आपको सुनवाएंगे।

गुड इवनिंग रोहतास। 7:15 के बाद हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र 7:25 पर और सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार। हेलो मनपसंद कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या के 7:50 से और 8:45 पर होगा समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय गायन पर आधारित कार्यक्रम सुर सौरभ, सितार वादन पर आधारित। और रात्रि 9:30 पर हो गए विविध भारती के कार्यक्रम के तहत आज के फनकार को आप सुनेंगे। हिंदी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम रस रंग आप सुनेंगे रात्रि के 10:00। और 10:30 पर चित्रपट तराने के तहत आप हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद लेंगे। 10:55 पर हम आपको अगले दिन के कार्यक्रम विवरणी और मौसम पूर्वानुमान के बारे में बताएंगे। और रात्रि 11:00

रात्रि 9 बजे हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय गायन पर आधारित कार्यक्रम सुर सौरभ, सितार वादन पर आधारित। और रात्रि 9:30 पर हो गए विविध भारती के कार्यक्रम के तहत आज के फनकार को आप सुनेंगे। हिंदी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम रस रंग आप सुनेंगे रात्रि के 10 बजे। और 10:30 पर चित्रपट तराने के तहत आप हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद लेंगे। 10:55 पर हम आपको अगले दिन के कार्यक्रम विवरणी और मौसम पूर्वानुमान के बारे में बताएंगे। और रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इसके साथ ही होगा समापन सभा का रात्रि के 11:10 पर। तो अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम विवरणी। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मलिका।

अभी आप सुन रहे थे फौजी कॉलिंग फिल्म का ये प्यारा सा गीत, स्वर सोनू निगम के थे। राजेश मंथान ने इस गीत को लिखा था और धुन बनाया था विजय वर्मा ने। और अब आइए सुनते हैं गीत मलिका कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अंधाधुन से। गायक कलाकार है अमित त्रिवेदी, जयदीप सहनी ने इस गीत को शब्द दिया है और धुन अमित त्रिवेदी के।

अभी हम सुन रहे थे बाबा ब्लैक शिप फिल्म का ये गीत मीका सिंह कनिका कपूर के स्वर में। शब्द जलीस शेरवानी बाबू सिंह मान के थे और धुन बनाया था सुपरबिया अभिजीत वघानी जयदेव कुमार और विशाल शेखर। और वाइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बधाई हो से गुरु रंधावा नेहा कक्कर के स्वर में।

0: अभी हम सभी सुन रहे थे फिल्म में दास देव का ये प्यारा सा गीत पापो और श्रद्धा मिश्रा के स्वर में, और इसी के साथ गीत मलिका का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगा हर्ट्ज़ पर। और अब आइए रुक करते हैं विविध भारती कार्यक्रम की ओर और सुनते हैं आज के फनकार कार्यक्रम को। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। अजीब सा नेहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो। खुली फजा में जरा जान व तन से ले चलिए, मुझे निकाल के सांसों के बंद से ले चलिए। इस तशकीक का एक पहलू ये भी है कि मोहब्बत के लतीफ एहसासात भी शक के दायरे में आ गए। जॉन एलिया इसकी सबसे नुमाया मिसाल है, जिन्होंने हर तस्लीम शुदा रवायत पर सवालिया निशान खड़ा किया। मसलन आप मिसरे को देखेंगे कि यही होता है खानदान में क्या, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, हासिले कुन है ये जहान खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में, क्या कहा इश्क जावेदानी ने, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। असलूब की सतह पर उर्दू गजल में अलामतों का कसरत से इस्तेमाल बराह रास्त जदीदियत के असरात का नतीजा है। वैसे भी जिंदगी के तह दर तह तजर्बात एक गहरे अंदाज में बयान नहीं हो सकते थे, मगर गजलगो शायरों ने जिस तरह शौरी तौर पर अलामतों से रिश्ता जोड़ा, उससे उर्दू गजल हमागीर और देरपा मानवियत से आशना हुई। सिर्फ एक शेर पेश करती हूँ जो मानवीय एतबार से बेहद खूबसूरत और देरपा असरात के हामिल है, क्योंकि इसमें न धूप के माने फिक्स किए जा सकते हैं न साया के। शेर देखिए, मैं देर से धूप में खड़ा हूँ, साया साया पुकारता हूँ। यहाँ इन रुझानात के मनफी असरात का भी मुख्तसरन तस्करा जरूरी है। मौजू की सतह पर देखिए तो अपने अहद और माशरे के हालात से बेनियाज होकर सिर्फ अपनी जात के मसाइल तक महदूद हो जाना बहुत दुरुस्त नहीं था। मुमकिन है ऐसा तरक्की पसंद तहरीक के रद्द अमल में किया गया हो, मगर एक इंतहा पसंदी का जवाब दूसरी इंतहा पसंदी नहीं हो सकती। दूसरा मनफी असर ये हुआ कि शायरी में ज्यादातर नाउमीदी और मायूसी पर मबनी तजुर्बात व मुशाहदात जगह पाने लगे। इसकी कनूतियत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सूरत जो कुछ भी थी मुआशे के लिए अच्छी नहीं थी। शायर सिर्फ अक्कास नहीं होता, रहनुमा भी होता है। मुमकिन है इस जमाने में अमूमी सूरत हाल मायूस कुन हो, मगर मुकम्मल अदबी रवैया भी ऐसा हो जाए तो फिर नाउमीदी से बाहर निकलने की कोई कोशिश ही नहीं होगी। असलूब की सतह पर भी देखें तो बाज तजर्बे महज तजर्बे या खुदमाई के तौर पर किए गए। रवैयों की मायूसी तो खैर लबो लहजा में उतर ही रही थी, मगर एक और पहलू यानी एम्बिग्यूटी या इहाम को लेती हूँ। इहाम गोई की रवायत अपने यहाँ पहले से मौजूद थी, मगर ऐसी नहीं थी कि एम्बिग्यूटी की मौजूदा सूरत का अहाता कर ले। दरअसल इस्तियारा और कनाया से आगे की सूरतें आम कारी की समझ में वैसे भी नहीं आती, मगर यहाँ शौरी तौर पर इबहाम पैदा करने का रवैया अपनी इंतहा तक पहुँच कर चिश्ता बन गया। वो इस तरह सिर्फ माने नहीं गायब हुए, इनकी शायरी भी खाल खाल ही नजर आने लगे। अब इन अशार को देखिए कि रात के कहर का डर है तो दियार शब से सरबरहना कोई परछाई निकलती क्यों है। सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की का पर्दा खींच दिया, रात हो गई। तरशी तो इनकी भी की गई और पढ़ी भी गई, मगर इनके असल माने तो बस इस मिसरे से जाहिर हो सकते हैं कि मगर अपना कहा ये आप समझें या खुदा समझे। असल जिंदगी के लायानी होने का एहसास गजल के असलूब में ढलने लगा, मगर इस तर्ज अमल से उर्दू गजल की मकबूलियत को ठेस पहुंची। दरअसल मुहमलियत अपने आप में एक तर्ज बयान है, क्योंकि

0: शायर जो कुछ कहता है वो सिर्फ इसके शऊर का हिस्सा नहीं होता बल्कि इसके लाशऊर और तहत शऊर के रुझानात भी इस पर अपना असर डालते हैं। जाहिर है कि ऐसा क्लासिकी गजल में भी होता था, मगर गैर शौरी तौर पर गालिब और यगाना जैसे खुद पसंद इसे इल्हाम या गैब के मजामीन करा देते थे, मगर जदीद गजल गो शोरा ये भी दावा नहीं कर सकते। मजमूई तौर पर यह एतराफ किया जा सकता है कि जदीदियत के रुझानात ने उर्दू गजल पर गहरे और देरपा असरात मुरतब किए। मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं पर निगाह रखी जाए तो ये मानना होगा कि जदीदियत से उर्दू गजल का दामन वसी हुआ और इसमें जमाने के एतबार से फितरी तब्दीलियाँ आई, यानी एक्सेप्शन हर जमाने में होते हैं और होते रहेंगे। हर्फ आखिर के तौर पर बस दो जुमले अर्ज करना चाहती हूँ। एक तो ये कि जदीदियत के रुझानात ने असलूब और मतन दोनों सतह पर उर्दू गजल को तकरीबन 3 दहाइयों तक मुतासिर किया। इसके तहत गजल का जो सरमाया वजूद में आया उसमें कुछ खसो खाशाक भी शामिल थे जो रफ्ता रफ्ता माजी की याद बन गया, मगर इसके मुफीद अनासिर आज भी मकबूल और फाल हैं।
1: ये थी डॉक्टर ज़रनिगार यास्मीन जो पेश कर रही थी मकाला उर्दू गज़ल गोई में जदीदियत के असरात के हवाले से। और आइए सामीन अब अगली पेशकश में लीजिए मुलाहिज़ा फरमाएं। कलाम शायर के तहत मज़हर आलम के कलाम।
2: खुदा के बाद

कलाम है आका जो मेरे तेरी।

पासो है हाजिर कलाम है आका।

कलामी शायर के तहत आप अभी समाप्त कर रहे थे मज़हर आलम से नातिया कलाम, और अब आई समीन बज़्म मौसीकी के तहत हम आपको ये गज़ल सुनवा रहे हैं। लीजिए मुलायजा।

0: कि अज दे समय बारे तुसी की मतलब कहना चाहोगे मौजूदा समय बारे?
1: देखो दो गल्लां तुसी कीतियां ने, एक लेखक ते एक साहित्य चिंतन बारे। मैं दोनों बारे गल्लां करांगा। लेखक जिहड़े ने, जिहड़े साडे पुराने लेखक सी ना, उन्हां दे कोल एक्सपीरियंस बड़ा हुंदा सीगा, अनुभव बड़ा सी, जिंदगी दा अनुभव बड़ा हुंदा सी। वारिस शाह लै लो, मैं कहना वारिस शाह दी हीर लै लो, हीर दी गल करदे करदे कि उत्थे दे साहित, सभ्याचार, उन्हां दे कपड़े, उन्हां दे गहने, उन्हां कमाल पंजाबी दा पूरा है, एक पूरा भंडार जिहड़ा उह सामने रख दिंदा है। अच्छा, इसे तरीके नाल जिहड़े साडे जितने भी पुराने लेखक ने, उह जिंदगी दे अनुभव विचों बोलदे सीगे, और उन्हां दा अनुभव बड़ा विशाल हुंदा सीगा। साडे जिहड़े नवें लेखक ने, उन्हां दे कोल थोड़ा जिहा ना अनुभव घटदा जा रहा है। ये बड़ी चिंता की गल हैगी है। वो उन्हां दी इस करके उन्हां दी गल दे विच ना, वो मल्टी लेयरनैस जिहड़ी ना, जिहड़ी एक बहुपरतता जिहड़ी, वो घट जा घटदी नज़र आती है, ते वो एक सिमटम की पद्धर ते चले जाते हैं। जिवें मान लो हुण नारीवादी है, एक आलोचक है या लेखक हैगी है, वो नारीवाद के बारे गल करती है, तो बस उन्होंने लगता कि भाई नारीवाद ही सब कुछ हैगा, या दलितवाद है, वो सब कुछ हैगा। वरायटी जी ना, वो खत्म होती जा रही है साढ़े को, साढ़े को जी वरायटी रहनी चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, जी साहित्य चिंतन के जी जी शिद्दत सी, वो घटती जा रही है। जी नवे साढ़े विद्वान ने, साढ़े पहली गल तो पहले के नवे विद्वान आ ही नहीं रहे, तुम तो देख लो साढ़े साढ़े सामने ने जोड़े विद्वान साढ़े को आए ने, उन्हां तो छड़ के अगली अगली जनरेशन जी है वो सारे घट आ रहे हैं। वह नतीजा की निकलता, एक पढ़न लिखन का घट जो ना, वो मटीरियलिज्म जोड़ा वो हावी हो रहा, पदार्थवाद जोड़ा वो हावी हो रहा, जिस करके साहित्य चिंतन जोड़ा उसनों ठेस जी ये पहुँच रही है। पर कुल मिला के पर पंजाबी साहित्य भाषा, साहित्य सभ्याचार, इदा इतना इतना विशाल इदा खेत्र हैगा कि ये इतने अनुभव, जीवन के अनुभव जोड़े ने वो पेश होए पे ने। चाहे नानक बाणी लै लो, चाहे वह सूफियां का कलाम लै लो, बाबा शेख फरीद जी का कलाम लै लो, बाबा भगत कबीर जी का कलाम लै लो, भगत नामदेव जी का कलाम लै लो। मैं कहना जिंदगी दे इतने आयाम जड़े ने, इतनी डायमेंशनस उन्होंने पेश ने, कि जे असी उन्होंने ही पढ़न बह जाइए तो मेरा ख्याल है कि असी जी साड़ी जिंदगी दे विच तजर्बे घटते जा रहे हैं, अनुभव घटते जा रहे हैं, असी उस साहित्य विचों उन्हें तजर्बियां उन्होंने अनुभवों के नाल जुड़ सकते हैं। साढ़े जड़े नवे जनरेशन के जोड़े लेखक ने, या होर चिंतक ने, विद्वान ने, हर सब्जेक्ट के कह लो, वो उपर उपर तैरते हैं। ये एक बड़ी वड्डी गल जी ना सानू लग रही है, तो वो डेप्थ विच नहीं जाते। जोड़े डेप्थ विच जाते हैं तो उन्हों की लेखनी, उन्होंने काम की भी दी प्रशंसा भी जी होंगी है, उन्होंने काम के डेप्थ होंगी है। ये जड़ा एक बड़ा वाडा है। पर जे मेरी राय यह हैगी है कि आप चिंतन के नाल जुड़े हैं, सिर्फ गल पंजाबी दी नहीं हैगी, गल सिर्फ किसी भाषा दी नहीं हैगी, सिर्फ भाषा ही तक नहीं, हर सब्जेक्ट दी गल हैगी है कि जदों भी कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट के नाल जुड़िया होवे तो उन्हें चाहिए कि वो अपने फील्ड के विच एक्सेल करे, एक्सेलेंट जिहड़ा वो बने। जे वो एक्सेल नहीं करता तो यदा मतलब कि वो किसी ना किसी उपर उपर तैर रहा है, वो डेप्थ विच नहीं गया।
0: अच्छा, कोई भी लेखक है, कोई भी विद्वान है, जिवें तुसीं दस्सिया कि उहनूं जिहड़ा है बहुत ही डेप्थ दे विच, डूंघाई दे विच, गहराई दे विच जा के उस चीज़ नूं जिहड़ा है समझना चाहीदा, उहदा अनुभव लैणा चाहीदा, ते ओह अनुभव उहदी लेखनी विचों जदों झलकेगा
1: चल गया
0: ते उहदी लेखनी वाकई ही एक जो जानदार लेखनी
1: जानदार हो गई।
0: होएगी।
1: यस यस
0: ते डॉक्टर मनजीत सिंह जी, अज तुसीं बड़ा वडमुला समां कढ के आए ते साडे नाल अपनी जिंदगी बारे अपने अनुभव सांझे कीते। इत्थे आउण दे लई, इह समां कढण दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।
1: थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुसी ये मौका दिता, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी आया नू इस लड़ी हेठ असीं डॉक्टर मनजीत सिंह होरां नाल इंटरव्यू सुन रहे सी, ते आओ हुण सुणिए एक गीत, लट्ठे दी चादर, जिस नू आवाज़ दित्ती है सुरेंद्र कौर ने।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथ में सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ

सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के साथ खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम पुनर्नवा में सभी श्रोताओं को सुरेंद्र का नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत कर उनके विचार और अनुभव श्रोताओं से साझा किए जाते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम पुनर्नवा में शामिल हैं उमा शंकर प्रसाद जी, जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत थे। तो उमा शंकर प्रसाद जी, हमारे कार्यक्रम पुनर्नवा में आपका स्वागत है।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: उमा शंकर जी, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले आप अपना पूरा परिचय बताएं।
1: मैं उमा शंकर प्रसाद, सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हूँ। मेरा घर दिनारा अंचल के जमरोड़ ग्राम है।
0: थाना और पोस्ट?
1: थाना भी, थाना दिनारा हुआ और पोस्ट भी दिनारा है।
0: तो जिला रोहतास होगा?
1: जिला रोहतास है।
0: चलिए, आपका परिचय हुआ कि आप जमरोड़ गांव के दिनारा अंचल में रहने वाले। अच्छा, तो आपकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई क्या आपके गांव में हुई थी या कहीं और?
1: मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव पर ही हुई थी और उसके बाद दिनारा हाई स्कूल में हुई, और दिनारा हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन करने के बाद, उस मेरे समय में 11वां क्लास था, उसके बाद मैं पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ 2 वर्ष पढ़कर वहाँ से इंटर किया। इंटर करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं एक इंजीनियर बनूं, और उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए मैं मुजफ्फरपुर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और वहाँ।
0: ये तो बात हुआ उमा शंकर जी, ये तो बात हुआ कि आपने पढ़ाई लिखाई के क्रम में आगे बढ़ते चले गए, लेकिन हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा पीछे ही हैं अभी, कि प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई 1 से 5 तक आपकी कहाँ हुई?
1: 1 से 3 तक गांव पर हुई, और 4 से 5 तक, 4 से 7 तक, उस समय 7 था, 4 से 7 तक दिनारा मिडिल स्कूल से पास किए।
0: यानी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई गांव से ही शुरू। अच्छा, थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके मन में, आपने बताया कि मेरे मन में इंजीनियर बनने

0: की एक कल्पना जागी थी,
1: जी हाँ
0: तो क्या किसी से प्रभावित थे आपके घर में? कोई इंजीनियर था या अगल बगल या हितगण, कोई भी ऐसे रिलेशन में?
1: मैं एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था और मेरे घर में कोई ऐसे इंजीनियर नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं थे। मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई। मैं अक्सर जाता था कैनाल पर और मेरे यहाँ कैनाल का सब डिवीज़न था और वहाँ इंजीनियर की पोस्टिंग थी। यही विचार जो है मेरे मन में आया और वही भावना मेरे मन में उद्वेलित हुई कि मैं भी एक इंजीनियर बनूं, जैसे कि ये लोग जो हैं बाहर से आकर और मेरे गांव में इंजीनियर बनकर रह रहे हैं और इंजीनियरिंग के कार्य को कर रहे हैं, तो मैं भी इंजीनियर बनकर इंजीनियरिंग का कार्य करूं।
0: यानी आपको कोई प्रेरणा नहीं दिया था, बल्कि आपको देखकर दूसरे को शौक लगा था कि

0: इंजीनियर बनूं, जैसे कि ये लोग जो हैं बाहर से आकर और मेरे गांव में इंजीनियरी बनकर रह रहे हैं और इंजीनियरिंग के कार्य को कर रहे हैं, तो मैं भी इंजीनियर बनकर इंजीनियरिंग का कार्य करूं।
1: यानी आपको कोई प्रेरणा नहीं दिया था, बल्कि आपको देखकर दूसरे को शौक लगा था कि काश मैं भी होता। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। और उमा शंकर जी, आपके इस समय की आवाज़ को बहुत सारे हमारे श्रोता, बुजुर्ग श्रोता और बच्चे भी सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सीख लेंगे कि किसी को देखकर अपने मन में जो भावना पैदा होती है, शौक पैदा होता है, उससे हमारा कल्याण ही होता है, फायदा ही होता है, जैसे आपको सर ने बताया। पढ़ाई लिखाई के बाद आप तो मैट्रिक, इंटर, बीए करते चले गए, तो आपकी अंतिम पढ़ाई कहाँ हुई? मेरा मतलब कि बीए किए कि एमए किए कि कहाँ तक पढ़ाई की?
0: सामान्य शिक्षा मेरा इंटर साइंस ही रहा, इंटर साइंस किए साइंस कॉलेज पटना से, और उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग में चले गए।
1: यानी आप इंटरमीडिएट पढ़ के पढ़ाई छोड़ दिए थे, उसके बाद? अच्छा, नौकरी के लिए आपने क्या क्या किया? मैंने कि फॉर्म भरे, चाहे इंजीनियर बनने से पहले भी किसी नौकरी को चाहे थे, और उसके लिए जैसे पुलिस की नौकरी के लिए दौड़ना या टीचर्स की नौकरी के लिए कुछ फॉर्म अप्लाई और किसी नौकरी के लिए प्रयास किए थे?
0: मैं किसी नौकरी का प्रयास नहीं किया, सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए ही प्रयास किया,
1: और वो हो गया।
0: और वह हो गया, इंजीनियर मैं बन गया, मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं समझ गया कि मैं सोच लिया था जो वो पूरा कर लिया।
1: आपने क्या सोचा था कि काश अगर मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, तो आपके मन में जो ये हर इंसान के मन में एक भावना होती है कि मैं एक अच्छा सा घर बनाऊंगा या अच्छे अच्छे कपड़े बनवाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, या इस तरह की भावना, कौन सी भावना आपके अंदर थी जो इंजीनियर बनने के बाद वो शौक सबसे पहले पूरा करेंगे?
0: इंजीनियर बनने के बाद मेरे अंदर एक यही भावना थी कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं इंजीनियरिंग क्षेत्र में, और अपने लिए मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने लिए क्या करूंगा। मैं यही सोचता रह गया कि मैं समाज के लिए करूं, पब्लिक के लिए करूं, और ख़ास कर जो समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं और उनकी सेवा की आवश्यकता हो तो मैं पहले उधर करूं।
1: तो ये समाज की सेवा करने के लिए, गरीबों की सेवा, वंचित वर्ग की सेवा करके आप नाम कमाना चाहते थे, या आपके अंदर की भावना थी?
0: इसको नाम कमाने की बात नहीं थी, मेरे अंदर ये भावना थी कि मैं उनकी सेवा करूं, और इस भावना के बदौलत मुझे नाम मिल जाए तो वो अलग बात है।
1: मेरा मतलब है कि अगर सेवा करने के लिए इंजीनियर बनकर ही सेवा तो नहीं किया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में जैसे समाज सेवा किया जा सकता है, तो और कोई भावना नहीं आई आपके मन में?
0: ना, मेरे मन में सिर्फ यही भावना थी कि मैं इंजीनियर बनकर ही समाज की सेवा करूं।
1: चलिए, बहुत अच्छी सुंदर बात है, और आपकी मनोकामना भी पूरी हो गई ईश्वर की कृपा से। तो अब थोड़ा सा उमाशंकर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय, वर्तमान समय में आपका निवास स्थान कहाँ है? गांव रहते हैं या शहर में कहीं रहते हैं?
0: वर्तमान समय में मेरा निवास सासाराम में ही है।
1: तो सासाराम में क्या किराए के मकान में रहते हैं या अपना मकान है?
0: सासाराम में अपना एक छोटा सा मकान है जिसमें कि मैं रह रहा हूँ।
1: अपने मकान को छोटा सा कह रहे हैं, इस बात का अर्थ क्या समझें कि आप बड़प्पन में बोल रहे हैं या वास्तव में मकान छोटा है?
0: मकान तो मकान वास्तव में ही छोटा ही है, बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे मन में मैंने इस तरह की भावना है कि मैं मकान को बड़ा क्यों कहूँ, मेरा मकान छोटा ही है, इसीलिए कह रहा हूँ कि एक छोटा सा मकान है जिसमें कि मैं रह रहा हूँ सासाराम में।
1: हर बड़े लोग, जैसे हम तो अपने ही नज़रिए से देखेंगे और जानते हैं, जैसे काफ़ी बड़े विद्वान लोग अपने को बहुत छोटा समझने लगते हैं, काफ़ी अच्छे लोग और बड़े लोग अपने को अपनी बड़ाई नाप नहीं पाते हैं। तो शायद आपके मन में यही भाव

0: चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा उमाशंकर जी, एक बार और बात बताइए कि आप स्वयं इंजीनियर बनना चाहते थे, बन भी गए, आपका लगन, मेहनत और इच्छा कामयाब हो गई। अपने बच्चों के बारे में कभी सोचे कि हम अपने बच्चों को कुछ पढ़ा लिखा कर ये बनाना चाहेंगे वो, और उस तरह का मूवमेंट दिए?
1: हाँ, हम अपने बच्चों को सामान्य शिक्षा में सभी बच्चों को ग्रेजुएशन करा दिए हैं, और जो उन लोगों को हम उत्साहित करते रहे कि आप लोग भी एक अपना इच्छा रखिए और अपनी इच्छा के अनुसार काम कीजिए। तो मेरा एक ही लड़का है, और ग्रेजुएशन के बाद उसकी इच्छा हुई कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम अपना बिजनेस में रहेंगे। इसलिए मैं उसको कभी नौकरी के लिए दबाव नहीं दिया।
0: ये तो बहुत सुंदर बात है कि आपने कभी उसको अपने तरीके से नहीं मोड़ा, बल्कि उनके इच्छा के अनुसार आप सहायता की है।
1: जी हाँ, हम अपने बच्चों को हमेशा उनकी इच्छा जैसी है उस इच्छा में हम सहयोग किए।
0: बहुत सुंदर बात। तो आपके संस्कार, आपके इस तरह के विचार आपके बेटा पर काम कर गए। आप अपने बेटा पतों से काफ़ी संतुष्ट हैं, खुश हैं?
1: हाँ, हम अपने बच्चों से काफ़ी संतुष्ट हैं। बच्चे की शादी जो किए, अब बहू आई, बहू को हमको यही लगा कि मेरी एक बेटी है, और बेटी के अनुसार ही वह मेरा देखभाल करती रहती है। यहाँ तक कि मुझे कब खाना है, कब दवा लेना है, इस सारी चीज़ों को याद रखती है वो, और हमेशा हमको कहते रहती है कि आप टाइम हो गया है, नाश्ता कर लीजिए, दवा खाना है, इस तरह से कहती है। मेरी बेटियां जो हैं वो अपने अपने घर में जहाँ हैं वो यहाँ का संस्कार है, वो संस्कार युक्त हैं, और वो अपने घर की करीब करीब सभी मालकिन हैं, डायरेक्शन देती हैं अपने यहाँ ससुराल में।
0: चलिए बहुत बढ़िया बात है। सबसे अच्छी बात है कि आप अपने बहू को बेटी समझते हैं, और उनके व्यवहार और उनके कर्तव्यों से आप काफ़ी संतुष्ट हैं। इससे बढ़िया बात आपने बताया। और अपने, अगर आप ऐसे हैं तो अपने बुजुर्ग श्रोताओं को, भाई बहनों को क्या शिक्षा देंगे?
1: हम अपने बुजुर्ग श्रोताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें और उन पर कभी उनके इच्छा के विरुद्ध दबाव नहीं दें। इच्छा के विरुद्ध का मतलब ही नहीं कि वो गलत काम में जा रहे हैं तो उनको तो जरूर रोकें, लेकिन अच्छे काम में अगर अग्रसर हैं तो उनको मोड़ कर अपने अनुसार मत कीजिए, बल्कि उनको सहायता कीजिए। और दूसरी बात है कि बुजुर्गों से मैं यह भी निवेदन करूँगा कि जब बच्चे की शादी हो जाए और बहू आ जाए तो उस बहू को अपनी बेटी के समान मानिए, न कि उस बहू के ऊपर अपना कोई ऐसा अधिकार जमाइए जिससे कि उसको अच्छा नहीं हो लगे। यही मेरा अपील है आप सबसे, आप वृद्धों से।
0: बहुत सारे बुजुर्ग श्रोता आपकी आवाज़ सुन रहे हैं और निश्चित रूप से वो समझ भी रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे श्रोता ये सोचते हैं कि घर मेरा है, मालिक मैं हूँ, मेरी पत्नी मालकिन है, ये 4 दिन की लड़की आकर हमारे ऊपर अपना शासन चला रही है। तो इस तरह की बात अगर वो सोचते हैं तो उनके उनको क्या सलाह देंगे?
1: वैसे लोगों को मैं यह सलाह दूंगा कि आप कभी यही नहीं सोचें कि घर मेरा है, ज़मीन मेरा है, पैसा मेरा है, इस सोचे ही नहीं, क्योंकि यह जो है आपके साथ जाने वाला नहीं है, यह सब छूट जाएगा। और जो आपका व्यवहार होगा अपने बच्चों के प्रति, अपनी बहू के प्रति, वही व्यवहार कायम रहेगा, और आपके जाने के बाद भी आपका नाम वो लेती रहेगी, और बहू ऐसा सोचेगी कि हमारे जो ससुर गुजर गए एक देवता थे। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप ऐसा काम कीजिए कि आप

0: देवता स्वरूप रहिए और देवता जैसा आप पूजनीय बनिए।
1: अच्छा उमा शंकर जी, एक ठो सटे सवाल, मेरा कहने का मतलब कि आप अपने बेटा के लिए, बहू के लिए, नाती के लिए इस तरह का विचार रखते हैं, इस तरह का व्यवहार रखते हैं, तो इसके जवाब में क्या आपकी बहू भी आपको अपना बाप की तरह समझती हैं, आप बाप की तरह व्यवहार करती हैं, इसके बारे में बताइए।
0: हाँ, मैं अब बड़ाई क्या करूं, बहू की दूसरे की बेटी है और मैं तो अपना ही समझता हूं कि मेरी बेटी है, और वह कभी भी अपने पिता से हमको अलग दृष्टि से नहीं देखी, हमेशा यही मानी कि मेरे पिताजी हैं और आप भी हमको पापा ही कहकर पुकारती है।
1: अदर पर्सन जो सुने, जानता ना हो और सुने, तो उसको क्या लगेगा?
0: उसको अदर पर्सन जो हमारे अगल बगल के हैं, ये लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि आप जो हैं बहू बड़ी सुंदर पाए हैं, व्यवहार कुशल पाए हैं और बहुत अच्छी पाए हैं, वह घर की लक्ष्मी है, दूसरे लोग इस तरह से कहते हैं।
1: चलिए, बहुत सुंदर बात है। हमारे नीति शास्त्र में तो ये बताया गया है, जिसकी पत्नी अनुगामिनी और पुत्र आज्ञाकारी हो, उसके लिए स्वर्ग कहीं और नहीं बल्कि यही धरती है। तो आप बहुत खुशनसीब हैं उमा शंकर जी। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, नौकरी में आने के बाद सबसे पहला टारगेट घर बनाने के लिए, खेत जमीन खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए कौन सा काम किए?
0: नौकरी में आने के बाद मैं कभी नहीं सोचा कि घर खरीदूं, गाड़ी खरीदूं, मकान बनाऊं, बल्कि अपने भाइयों के शिक्षा पर मैंने जोर दिया। जहाँ भी रहा अपने भाई को अपने साथ रखा, उनको हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ाया, तो शिक्षा के प्रति कि हमारे भाई भी शिक्षित हो जाएं, और यही कारण है कि आज अपने भाइयों के बीच में भी मैं एक सम्मानित भाई हूँ, लोग सम्मान देते हैं मेरा।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे मिलकर तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, बातचीत तो हम लोगों ने बहुत किए उमा शंकर जी। अब थोड़ा सा हम लोग और अपने हमारे श्रोता भी, आपको भी और अपने श्रोताओं के लिए भी एक गीत हो जाए, तो अपने पसंद का कोई गीत बताइए जिसको हम भी सुने, आप भी सुने और हमारे श्रोता भी सुने।
0: हाँ, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे पसंद का गीत, मैं चाहता हूँ कि एक कोई ऐसा गीत हो जाए जो भजन के रूप में रहे, और अब तो भजन ही हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए वह एक धार्मिक कोई, मैंने उस तरह से गीत हो जाए किसी देवता के बारे में।
1: तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म खानदान से।

उम्मीद है यह गीत आपको और हमारे श्रोताओं को भी पसंद आया होगा। उमा शंकर जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे आकाशवाणी परिवार और हमारे श्रोताओं के लिए दिया, इसके लिए अपने तरफ से और आकाशवाणी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अलावा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुनर्नवा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है भोजपुरी एल्बम लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी।

और इसी के साथ लोक माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसधार। रसधार में आइए सबसे पहले सुनते हैं विवेक हरिहरन के स्वर में बे बाबुनी एल्बम का ये प्यारा सा गीत। डॉक्टर सागर ने इस गीत को शब्द दिया है, धुन अनुराग सैनिक के।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: और अब आइए सुनते हैं रसधार कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत, भाग गईले अखिया एल्बम से। आलोक रंजन ज्योति तिवारी ने इस गीत को गाया है और अशोक कुमार दीप ने शब्द बनाए हैं।

और इसी गीत के साथ रसधार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती से, करें कुछ पल का इंतज़ार।

हम सुन रहे थे आबसार एल्बम से यह गजल, जिसे गाया महिमा ने, सरदार अंजुम ने इसे लिखा और सोमदत्त बट्टू ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला नगमा, जो कि है हिंदुस्तान क्लासिकल गजल एल्बम से, तलत महमूद की आवाज़ है, हसरत त्रिमिजी ने इसे लिखा है और चित्ता रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति।

0: लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के बोल और फैयाज शौकत के संगीत के साथ ये खूबसूरत सा नगमा।

नॉन फिल्मी गीत एंड गजल एल्बम से हम सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजा हुआ और मन्ना डे के ही संगीत से सजे हुए इस नज्म को। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा, जो कि है ये मिलन ख्वाब सा, इस एल्बम से तलत अजीज की आवाज में। सरदार अंजुम ने इसे लिखा और तलत अजीज ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफी की आवाज में सुन रहे थे ये नगमा, जिसे सबा अफगानी ने लिखा, इकबाल ने संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उषा टंडन की आवाज में दाग के द्वारा लिखे इस नगमे को।

हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एल्बम गजल से एक गजल जो गाई है प्रतिभा सिंह बघेल ने। कमलेश सोनावाला ने इसे लिखा, राजू राव प्रमिला राव ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दानिश के बोलों के साथ इकबाल के संगीत के साथ सुन रहे थे हिंदुस्तानी गज़ल एल्बम से ये नज़्म को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज़्म।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50-27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में। हर प्रतिदिन हम सजाकर लाते हैं यादों की महफिल किसी एक खूबसूरत सी याद के साथ। तो आइए सुनते हैं आज के यादों की महफिल कार्यक्रम के इस खूबसूरत से नगमे को।

हम सुन रहे थे छोटी सी बात फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ और योगेश के बोलों से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा। आज हम सुनवा रहे हैं गीतकार योगेश की कलम से निकले हुए गीतों को।

हम सुन रहे थे ये गीत आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में, योगेश के बोल सलिल चौधरी के संगीत के साथ। अग्नि परीक्षा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ सुनते हैं गीत।

हम सुन रहे थे अग्नि परीक्षा फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल और सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में अधूरा आदमी फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, योगेश के बोल हैं, राहुल देवर्मन का है संगीत।

0: यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
6: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
6: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
6: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
7: सखी सहेली।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: हम सुन रहे थे रजनीकंदा फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में योगेश के बोलों के साथ सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं

गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे मंजिल फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में योगेश के बोल और आरडी वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हमने यादें सजाई हैं योगेश की कलम से निकले।

हम सुन रहे थे अपने पराए फिल्म से यशुदास आशा भोसले की आवाज़ में योगेश के बोलों को, जिसे बप्पी लहरी ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। योगेश के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है, फिल्म है चालबाज।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सफर कितना सुरीला हो जाता है ना अगर सब साथ हो, और यही साथ अगर एक साथ हो तो मजा अलग ही आता है। आज की इबारत हमने लिखकर भेजी आपको, और उस इबारत को हम पढ़ना चाहते हैं हमारे उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर वह इबारत नहीं पढ़ी है। तो चलते हैं उस इबारत की ओर। हमने इबारत लिखी कि एक लड़की बोली, मेरे पास तो सब कुछ थोड़ा ही है, पर मुझे विश्वास है कि आने वाले पल पर जो मेरे लिए खुशियों का ताल बन जाएगा, और नदियां जैसे अपनी धारा के संग चलती हैं, मेरी जिंदगी का सफर भी चलता रहेगा। अगर उठेंगे सबके कदम दूसरों की मदद के लिए तो जीवन के दिन कहाँ छोटे रह जाएंगे। तो चलो किसी की मुस्कुराहट के लिए भूल जाते हैं कि कुछ लोग क्या कहेंगे। और यही बात याद रखते हुए हम चलते हैं आज के सुंदर सुंदर संदेशों की तरफ जो कि भेजे हैं आप सबने हम तक। हमारे श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी कलम को मैं प्रणाम करती हूँ, और उनकी ही लिखी हुई कुछ बातों को आपके साथ साझा करती हूँ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की उम्मीद, विश्वास, इंसानियत का संदेश देती है। जैसे नदियाँ निरंतर बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। अगर हम अपने कदम दूसरों की भलाई के लिए बढ़ाएं और किसी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें तो जीवन के छोटे पल भी अनमोल बन जाते हैं। दुनिया क्या कहेगी, इस बात की चिंता छोड़कर सदैव अच्छे काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मनुष्य के जीवन का सफर नदी की बहती धारा के समान निरंतर गतिशील रहना चाहिए। हम इसे प्रवाहमयी जीवन के रूप में देख सकते हैं, जहाँ ठहराव को जीवन के अंत के रूप में देखा जाता है। जैसे कि नदी की धारा सुख दुख रूपी किनारों के साथ ले अपनी गतिशीलता बनाए रखे हुए हैं, हम अपने लक्ष्य सागर में समाहित को प्राप्त करती है। इसी प्रकार हमें भी जीवन में कहीं नहीं रुकना चाहिए जब तक हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाते। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जीवन में परेशानी आना स्वाभाविक है, हर चुनौती में एक नया सबक तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का सफर कोई मंजिल नहीं बल्कि हर पल एक अनुभव है, इसीलिए अपनी गति और सरलता के साथ जिए। हमारे कौर श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि जीवन की सच्चाई को बखूबी बयां करता गद्यांश संतोष का आनंद दर्शा रहा है। जहाँ थोड़े में खुशियों की ताल जीवन के अविरल चलते सफर में आने वाले भविष्य को किसी जरूरतमंद की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखने की बात कह रहा है। बिल्कुल सही बात है, संदेश यही है। पर इसके साथ आपने गाने भी चुने हैं, तो आइए देखते हैं आपके गाने और हमारे गाने मिलते हैं या नहीं। तो हर बार की तरह मेरे पास तो दो प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न बड़ा सरल सा है कि कुछ शब्द होते हैं जो शब्द एक जैसे होते हैं, यानी उनको पलट दो तो अलग हो जाते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है, पर खुद बनते उतने ही अक्षरों से हैं। जैसे अगर मैं कहूं दया और उसका ही उल्टा हो जाता है याद, दया याद। अगर हम किसी पर दया करें तो वो हमें याद रखता है। ऐसा ही है राही और उसका हो जाता है हीरा, राही हीरा। तो जो राह में चलता जाता है वही हीरा बनता है। ऐसे कई सारे शब्द इस सृष्टि पर घूम रहे हैं, तो आज के पूरे कार्यक्रम में आप ढूंढते रहिए ऐसे शब्दों को। अगर कोई शब्द याद आ जाए तो जल्दी से हमारे फेसबुक पर साझा कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार अनवरत

आपके वो शब्द मैं पूरे कार्यक्रम में पढ़ने वाली हूँ, तो जब जो शब्द याद आए, तीन अक्षर का, दो अक्षर का, जो भी याद आए, जल्दी से भेजिएगा। और अगला गीत मैं आपको सौंप रही हूँ, बताइएगा इस गीत के गीतकार कौन है।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन है और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मजरूह सुल्तानपुरी। और बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि आप बताइए कि कौन सा शब्द है जो उसका उल्टा है, लेकिन अर्थ भी अलग है लेकिन साथ में मिल जाता है। जैसे हमारे श्रोता ने लिखा कि इबारत से ही शब्द ताल लता, ताल मिलते ही लता गा उठती है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है सीमा मासी, यानी सीमा नाम की मासी जिसकी होगी वो सीमा मासी बड़े आराम से हो जाती है। खीरा राखी, धारा राधा, दा गदा, मीना नामी, बहुत सारे

इन्होंने हमें दिए हैं, और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे और शब्दों के बारे में हमें बताया है। जैसे उन्होंने लिखा है कि एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा शब्द दिया, राधा धारा। तो जो धारा के साथ बह उठे वही तो राधा का हो जाएगा। इसे हम धार्मिक परिवेश में ले जाकर इस तरह से समझ भी सकते हैं। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया कि आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म का यह गीत, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी है, बिल्कुल सही। भला का उल्टा लाभ, बिल्कुल सही है। हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। शादी दिशा, तो शादी जो होती है वो सही दिशा में हो तो कितना अच्छा है। नवीन नवीन दोनों तरफ से एक जैसा होता है। और हमारे श्रोता ने लिखा मरा राम, तो इसके लिए हम बचपन में कहा करते थे जब तक मरोगे नहीं तब तक राम के कैसे होगे। तो राम का होने के लिए भी हमें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसे कई सारे शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं और अगर आते रहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है कि किसी को अपने सफर में शामिल करने के पहले यह समझना चाहिए।

मरोगे नहीं तब तक राम के कैसे होगे? तो राम का होने के लिए भी हमें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसे कई सारे शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं और अगर आते रहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है कि किसी को अपने सफर में शामिल करने के पहले यह समझना चाहिए कि उसका नजरिया क्या है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, तो गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। अपने विश्वास को इस तरह से पेश करें कि सामने वाला उसमें अपना भी कोई सपना भलाई नजर आए। जब व्यक्तिगत उद्देश्य एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं तो कारवां अपने आप बनता जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक और लिखते हैं, हमारा विश्वास है कि हमें सब कुछ दिला सकता है, फिर भी हमारे जीवन में राह सुकून भरी हो जाती है। जैसे नदी के किनारे सुकून मिलता है, इसी दौरान कदम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे जीवन के दिन बड़े हो जाते हैं और किसी की मुस्कुराहट की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा, आपने हमारी इबारत को ही घुमा दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं, जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाने के लिए छोटी छोटी खुशियां और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अक्सर हम बड़ी सफलताओं की खुशी तलाशते हैं, लेकिन असल में दैनिक जीवन के छोटे छोटे पल ही मानसिक शांति और सकारात्मकता का आधार बनते हैं। इसीलिए हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही छोटे एक एक सच्चे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। सच बात है, छोटी छोटी खुशियां बड़े जीवन की बड़ी प्यारी सी खुशियां बन जाती हैं। तो चलिए, हम अगला गीत आपको दे रहे हैं। ऐसे ही जो शब्द है ना, एक दूसरे से उल्टे पलटे पर मिलते जुलते या कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते, अगर कोई शब्द आपको आता है तो आप जरूर हमें भेजिए और साथ में सुनिए ये गीत। अब फिर से मैं आपसे पूछ रही हूं, इस गीत के गीतकार कौन है? बहुत खूबसूरत गीत है, सुनिए।

हम सुन रहे थे खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बताया कि गुलजार ने इस गीत को लिखा है और कई लोगों ने कहा कि कितना सच्चा गीत है ना ये, थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है जिंदगी, फिर भी यहाँ खूबसूरत है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे और इस गीत के साथ में हमारे श्रोताओं ने लिखा कि कई सारे शब्दों के बारे में बताया, जैसे पापा, दादा, नानी, मम्मी की नानी और नानी की मम्मी, ये रिश्ते बदलने से पात्र बदलते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे एक श्रोता लिखते हैं मधु धूम, कितनी बढ़िया है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैं राधा का नाम जपूं जमुना धारा में, कितना बढ़िया है ना, मैं राधा का नाम जपूं जमुना की धारा में, मुझे भी बड़ा मजा आया पढ़कर। ये सीधा पढ़ो या उल्टा राधे राधे, जी बिल्कुल। एक ने लिखा है तेजू के पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया तेजू के पापा और पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक जैसा हो जाता है। कनक, एक बचपन में पढ़ा करते थे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका या काए बौरात नर वा पाए बौराए, इसी बात को लिखकर उन्होंने बताया है कि कनक के लिए उन्होंने अर्थ बताया कि एक कनक सोना है और दूसरा कनक आटा भी होता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया हरा राह हवा वाह सखा खास, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे सखा हमारे लिए खास होते हैं। टोपी पीटो दिखा खादी, खादी दिखाइए के लिए दिखा खादी, नाम मना, और इसके साथ ही लीला लाली, लीला करने से ही लाली आती है। ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारे शब्द भेजे हैं, आप भी भेजते जाइए। अब जो अगला गीत है मैं आपको सौंपूंगी, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है कि थोड़ी सी खुशियां, विश्वास और मुस्कुराहट के सहारे जिंदगी का सफर आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदियां अपनी धारा के साथ निरंतर चलती हैं, वैसे ही पल भर नहीं रुकती, दूसरों के कदम के लिए अगर सबके कदम दूसरों की मदद के लिए उठे तो दिन और खूबसूरत बन जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज और लिखी है कि थोड़ी सी खुशियां, दूसरों की मदद और मुस्कुराहट बांटते हुए जीवन का सफर चलते रहने का विश्वास, यही तो है सुरीला सफर की असली मिठास। जी बिल्कुल, और इस मिठास के साथ हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक गंभीर सा सवाल, ये जो आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं वो जरूर लिखते जाइए, पर उसके साथ एक सवाल और है, आपके माता पिता ने कोई ना कोई ऐसी सीख दी होगी जो आज भी आपके कानों में गूंजती है, जरा सोचिएगा, है ना, जरा इस सीख को याद कीजिए। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा हमारा हाथ हमेशा ऊपर देने हो रहना चाहिए, जैसे देने वाले का होता है, प्रयास करो, सदा दूसरों को देते रहो। ऐसा ही कुछ आपके माता पिता ने भी आपसे कहा होगा जो आपके कान में आज भी गूंजता है, उस विषय को याद कीजिए। और चलते हैं अगले गीत की तरफ, बस बहुत सामान्य सा सवाल है, इस गीत के गायक कौन है।

ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म से। और इस गीत को लिखा इंदिवर ने, रोशन ने संगीतबद्ध किया, और हमने आपसे पूछा था कि गाया किसने, तो आपने कहा बहुत खूबसूरत सी आवाज़ मुकेश की है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और हम आपसे बात कर रहे थे दो विषयों पर, एक विषय तो ये चल रहा है कि कोई भी शब्द जो उल्टा सीधा एक सा होता है वो बताइए, साथ में दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी सीख है जो आपके माता पिता ने आपको दी है। हम वह सीखें आज यहाँ से पढ़ेंगे ताकि सारी माता पिता की सीखें हम सबके पास में आ जाएंगी। हमारे एक श्रोता ने उस विषय पर लिखा है जहां पर शब्द उल्टे सीधे होते हैं, चौबे जी भाजी बेचो जी, बिल्कुल ये बिल्कुल उल्टा सीधा एक जैसा हो जाता है। राधा की बुनी में नींबू की धारा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है हार रहा, और इसके साथ ही राज जरा धूम मधु, इसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं दादी बोली धूम मत मचाओ तो मधु मिलेगा। बिल्कुल सही। नवजीवन नवीन, अगर शब्द को उल्टा सीधा करते हैं तो वो एक जैसा हो जाता है। मजा आ रहा होगा शायद बचपन के इस खेल को खेलकर, और उसी बचपन में हम वापस चलते हैं। हमारी सीखों के लिए कितना अच्छा होगा अगर हम सारी सीखें याद कर लें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। हमारे श्रोता लिखते हैं मेरे पिताजी की दी हुई सीख कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, क्योंकि रुकने पर जिंदगी पोछ लगने लगती है। क्या बढ़िया बात कही आपके पिताजी ने। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे मम्मी पापा अक्सर कहा करते थे कि अगर आसमान को छूना चाहते तो हमेशा धरती के हर प्राणी से प्यार करो और सबसे प्रेम से बात करो। क्या बढ़िया बात कही है। और हमारे श्रोता ने हमारे उस गीत के लिए कहा है कि जो अनोखी रात फिल्म का ये गीत है उसमें जो आलाप है वो हेमंत कुमार जैसा लगता है। अब इस बात की जानकारी हमें नहीं है, शायद आपको हो। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ने बहुत प्यारी सीख दी है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो तो सदा सुखी रहोगे। इस सीख को हम सदा याद रखते हैं और ज्यादा की चाहत नहीं करते। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन में धैर्य जरूरी है, इसे हमेशा बनाए रखना, ऐसा पापा कहते थे। मैं कोशिश करती हूँ और कभी धैर्य और धीरज खोना दूँ इस बात का ख्याल रखते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं हमें बोला गया था चाहे ज्यादा हो या बहुत कम मदद करो पर लेने वाले की आंख में मत देखो क्योंकि उसकी लाफे नींद छीन लेगी। कितनी बढ़िया बात सिखाई है, देते समय उसकी नजर में मत देखो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे पापा ने कहा है कि दूसरों की मदद करते जाओ, कोई मदद करे या ना करे, बस भगवान है ना बस। और मम्मी कहती हैं जो साथ मिलकर रहने में खुशी है वो खुशी कहीं और नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसी बात को हमने एक आपके सामने कनक कनकते सौ गुने पढ़ा था, तो हमारी एक हिंदी की शिक्षिका यानी हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी में यमक अलंकार का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें कनक दो बार आया है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात जहर, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु। बिल्कुल सही बात है। और चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखकर हमें भेजी थी कि एक बात तो सच है कि लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और डर को छोड़कर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग इस डर से अपनी खुशियां खो देते हैं, और विचार सिखाता है कि दूसरों की भलाई और अपनी खुशी के आगे फिजूल की बातों को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल भूल

बताना चाहिए। और जो मैंने आपसे दो प्रश्न रखे हैं, उन दो प्रश्नों के उत्तर देते जाइए कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, माँ ने सिखाया या पिता ने सिखाया, किसी ने तो कोई सीख दी होगी, उसे जरूर बताइए। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइएगा इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे सफर फिल्म का यह गीत मन्ना डे की आवाज में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, ये कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और बहुत खूबसूरत संगीत है, बहुत प्यारा माटी से जुड़ा गीत है। अब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं अपने माता पिता के बारे में, और वह एक और हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है कि नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा। जी बहुत प्यारे बोल हैं, बहुत प्यारा लिखा है इंदिवर ने इस गीत।

को। और हमारे श्रोता थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं कि बार बार ये गीत सुनाया जा रहा है, क्षमा चाहेंगे, अगली बार प्रयास करेंगे कि नए गीतों को लेकर आपके बीच आए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वैसा कोई और प्रेम नहीं होता। माता पिता के प्यार से समझाने के लिए आपको स्वयं बच्चों का पालन पोषण करना होगा। बच्चे अपने माता पिता से मुस्कुराना सीखते हैं। मेरे हीरो मेरे माता पिता हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने, बड़ा आनंद आया इस बात को पढ़ने के बाद में हमें। और इसके साथ ही हमारे सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छे से जुड़कर बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भेजते हैं, उसके लिए भी हम सबकी तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हाथ एक दान से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। किसी को कुछ दो ना दो, पर दो शब्द एक प्यार भरी मुस्कान दे दो। किसी को अगर किसी को और अगर किसी का कुछ काम करो तो ये भावना ना हो कि वक्त पड़ने पर वह हमारे लिए काम आएगा, बल्कि ऐसा कहो कि किसी का बुरा वक्त आए ही ना। कितनी बढ़िया सीख आपको मिली है आपके जीवन में आपके गुरु के हाथों से। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि विदी जी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई हमारे घर आता है और जब वह जाने लगी तो दरवाजे तक उसके साथ जाकर उसे विदा करूं, जिसे मैं आज तक निभा रही हूं। जी, आजकल होता है कि कोई निकलता है और हम दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर पहले ऐसा था कि जब तक वह दिखना बंद ना हो जाए तब तक हम उसे विदा करते थे। कितनी अच्छी बात थी ना। इसके साथ हमारे श्रोता कहते हैं कि मेरी माता ने मुझसे कहा था कि किसी मजदूर का एक पैसा भी मत रखो, हो सके तो ज्यादा दे देना। मैं इस बात को आज तक अमल में लाता हूं, कभी किसी मजदूर या श्रमिक का कोई पैसा नहीं रखता हूं। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वे कभी अलग ना हो पाए, ऐसा ही रहे, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं किसी की हाय मत लो, यह सिखाया गया है इनके पिताजी के द्वारा। हमेशा हमारे पापा तो हमेशा कहते थे एक समय के पाबंद रहो, तरक्की उन्नति सदैव करोगे। बिल्कुल सही बात। एक और पिताजी कहा करते थे किसी से मत डरो, जो डर गया समझो मर गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात कहते थे, डरना तो बहुत गलत चीज है शायद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि उनके जो जीवन में सीख है माता पिता के संस्कारों से टिकी है। उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम्हारे शब्दों में किसी का रूह ना आहत हो, मेरी आत्मा में बसी है ये बात। वहीं पिता का अडिग मंत्र व्यापार हो या जीवन, ईमानदारी ही एकमात्र धर्म है, मेरी राह का दीपक। आज जो भी हूं इन दो पवित्र विरासतों की बदौलत इन्हीं के प्रकाश से अपना जीवन जी रहे हूं। बहुत सही बात कही है पिताजी ने। कहा था बेटी किसी की बात पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, फिर तुम आत्मविश्वास को जीत जाओगी। और विश्वास शब्द हमारे इस इबारत में भी है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उनके नाना जी ने उन्हें सिखाया था, अंतिम समय में सीख गले लगाकर सीख दी थी कि ये संसार कुछ भी नहीं है, कर्म ही प्रधान है, सभी को साथ में लेकर चलना, किसी से भी जलन मत रखना। वो दिन मेरे लिए बहुत अहम रखता है। ऐसे ही जीवन में अहम रखते हैं ये सारी बातें, और ये ऐसे ही बनी रहे आप सबके साथ। मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूं, और उस गीत के साथ में मैं एक प्रश्न और यहां पर जोड़ दे रही हूं, और वो प्रश्न ये है, आज तक हमने कई लोगों के लिए मदद की होगी, कभी कोई ऐसी मदद जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई और आत्मा में सुकून, बताइएगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी को कुछ देकर हमारा पेट भर गया, ऐसा कब आपके साथ घटित हुआ था, जरूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत हम आपको सौंपने जा रहे हैं, ये गीत मैं जो जिस फिल्म से लिया गया उस फिल्म का नाम आपको बता देना है। और ये तीन प्रश्न आपके साथ चल रहे हैं, उल्टा सीधा वाला, आपके माता पिता की सीख वाला, और कोई ऐसी मदद जिससे आत्मा की भूख मर गई हो, थोड़े समय के लिए ही सही।

हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों से सजे हुए शंकर जय किशन के संगीत के साथ इस प्यारे से खूबसूरत से नायाब से गीत को जो फिल्म अंदाज से लिया गया है। और यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है और आप सबने बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हमारे एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है कि मैं थोड़ी देर से जुड़ी हूँ, क्या चल रहा है बताइएगा उल्टा सीधा। तो हमने एक प्रश्न कहा था कि जैसे राही हीरा, राही का उल्टा होता है हीरा और उसका कोई अर्थ भी होता है, ऐसे ही कुछ शब्द अगर आपके दिमाग में आए तो आप सुझा सकते हैं। साथ ही हमने एक और प्रश्न पूछा कि माता पिता की सीख आप बताइए और ऐसा कुछ जो आपने किया है और आपको बड़ा सुकून मिला है उसे भी सबके साथ साझा कीजिए। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जानवरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं, गर्मी बहुत है, सच बात है, हम तो पानी लेकर पी सकते हैं, कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, पर वो बेचारे अब उठ कहाँ जाएंगे, उनकी मदद भी तो हमें ही करनी है ना, क्योंकि उनके जंगलों को साफ करके, उनकी नदियों को पाट कर, उनके समंदर को पाट कर हम उनकी जगह पर रहने लगे हैं, तो इस बात का ख्याल हमें ही उनके लिए रखना होगा। तो हम सभी अगर ख्याल रखें तो कितना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोना बड़ा कीमती है, सोना अर्थात नींद भी बहुत कीमती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया शब्द दिया, सोना सोना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विधि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत थक जाती थी, ससुराल में बहुत कम बहुत काम

0: करना पड़ता था तो मेरी माँ कहती थी कि काम करने से इंसान और मजबूत होता है। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता था तो पापा कहते थे कि थोड़ा सोने में से वक्त कम कर दो, पढ़ाई का वक्त निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल में चाह होनी चाहिए। बस दिल की चाह पूरी करते जाइए। और हमने जो प्रश्न पूछा था उसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंदाज फिल्म मोटरसाइकिल पर हेमा मालिनी को बॉम्बे की मुंबई की सड़कों पर गाते हुए घुमा रहे हैं राजेश खन्ना। बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि जब वह अपनी कॉलोनी गली से निकले तो हर आदमी आपकी इज्जत करे, और वह भी किसी डर या दौलतमंद होने के कारण नहीं बल्कि व्यवहार और नम्रता के कारण। कितनी अच्छी बात लिखी है। एक और श्रोता ने लिखा कि कोई भी काम छुपकर नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया। कितनी बड़ी सीख सिखा गए, छुपकर नहीं करेंगे तो गलत काम होगा ही नहीं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे आप किस तरह से जी रहे हैं आप पर निर्भर करता है। जिंदगी सहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। कितनी अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता जी पिताजी के गुजर जाने के बाद इनका भाई जो है वो पंडिताई करते रहे हैं, तो गांव में तीन बच्चों के साथ रह रहे थे और वो शहर में, और जब विकट स्थिति विश्व की आई थी उस समय रोजगार के अभाव में संकट था तो आर्थिक जिम्मेदारी निभाई थी, और आज वह संपन्न है पर उनकी बात नहीं भूला। बहुत सही बात है, मदद करने से जो खुशी मिलती है ना, खुशी कहीं नहीं होती। और मैं हमेशा करती रहती हूँ, कभी टीचर्स की, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, इंसान को बराबर समझती हूँ। कभी कोई भी हो, सबकी मदद करनी चाहिए। बस इतनी अच्छी बात आप लिख रहे हैं। मदद जरूर करिए मगर निस्वार्थ रखिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। पुराने कपड़े, पुराना सामान, बच्चों के खिलौने आदि जो कुछ हमारे काम का नहीं है, हम तो अनाथाश्रम में दे आते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, बेचारों के माता पिता नहीं है, किसी बहाने उनके माँ बाप बन जाए तो उनको भी खुशी होगी। हमारे श्रोता ने लिखा कि उनके गुरु जी कहा करते हैं कीरत करो, अर्थात कीर्तन, सत्संग करो, नाम जपो प्रभु जी का, वाहेगुरु जी का नाम जपते रहो, मंड रखो यानी मिल बांट कर खाओ, और इनके पिताजी ने भी यही सिखाया है इनको। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बात अजीब लग सकती पर मेरे पिताजी मेरे से इसलिए नाराज रहते थे कि मैं हमेशा ईमानदारी सच्चाई का साथ देती हूँ। मैं 51 साल की हूँ और लोग मुझे अभी भी बेवकूफ समझते हैं। नहीं, सच्चाई का साथ देने वाले का साथ हमेशा उसका ईश्वर जरूर देता है, तो साथ देते रहिए, अच्छी बात है। और चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। हमारी श्रोता ने एक लिखा है कि मेरी माँ ने सिखा है कोई कुछ भी बोले उसे मन पर नहीं लेना, हमेशा भूल जाओ, यही मानसिकता रखना। हमारे एक श्रोता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया है, उसके साथ लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखें भी आंखों के बैंक में डोनेट कर दी हैं, आईज भी आईज बैंक में डोनेट कर दी हैं। कितना अच्छा काम किया है, आपके बाद भी आपकी आंखें ये दुनिया देख सकेंगी। हमारे श्रोता लिखते हैं एक और, चाहे थोड़ा खाओ लेकिन जो खाओ वो अच्छा खाओ, ये बात पिताजी कहते थे और हमेशा हमें याद रहती है। बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न का उत्तर आप सब देने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे एक श्रोता का है, और वह प्रश्न ये है, आज बच्चों में नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या हम माता पिता जिम्मेदार नहीं हैं? जरा इसका उत्तर आप दीजिएगा, और तब तक सुनिए अगला गीत, और अगले गीत में बता दीजिए कि इसके गायक कलाकार कौन है। गायक कलाकारों के नाम बताइए और बताइए क्या बच्चों में की जो संस्कार अगर कम होते हैं तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं, बताइएगा।
1: उठ सबके कदम देखो रम पम पम।

हम सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से यह गीत। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आपने तो हमें बड़ी सारी जानकारी दे दी। और उस जानकारी में पहले तो आपने बताया भी कि इसके गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया कि एक बेहतरीन पारंपरिक गीत है, वासु चटर्जी की एक बेहतरीन पारिवारिक रिश्तों को लेकर बनाई गई फिल्म है। इसके लिए हमारे श्रोता बड़े खुश होते हैं कि उनके गीतों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि डेविड बूढ़ा और लीला मिश्रा को, जी को एक ईसाई वाला रोल किया, अमोल पालेकर और टीना जी के प्रेम चल रहा है, डेविड बूढ़ा मस्ती ले रहा है, लीला मिश्रा जी गजब ईसाई कल्चर है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। और अब चलते हैं हम हमारे संदेशों की तरफ जो हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और जल्दी जल्दी से हम हमारे संदेशों को पढ़ लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है सुरीला सफर का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता नहीं वस्तुतः नैतिक मूल्य गिरने का कारण स्वयं बालक का ही होता है। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को मानते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की जनरेशन में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण हर माता पिता हैं, क्योंकि हम उनने उन्हें खर्च का पैसा दिया है, मोबाइल दिया है, अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिलाया, लेकिन हमने अपने संस्कार, हमारे गुरुओं के साथ के बारे में बैठकर शिक्षा नहीं दी है। घरों में अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को रखें, इस बात की वो सलाह देते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता ही सबसे पहले जिम्मेदार हुआ करते हैं, समाज या माहौल उसके बाद में, क्योंकि पक्षी अपने चूजे को पंख निकल जाने से पहले तक पालता है और जब पंख लग जाए तो उसके बाद वह आपके रोकने पर भी नहीं रुकेगा। पैदा होते ही शिशु के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो अपने हितों के चलते ऐसे में किसको दोष दें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी बोलती थी, जहाँ काड़ वहाँ हड़ा बाड़, जो आपके पास है उसकी जरूरत के हिसाब से खर्च करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ईश्वर कभी कमी

नहीं आने देते, ये बात तो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ और इस बात का वो ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातों को लेकर इसमें लिखा है और इसके साथ ही अभी जो हम चल रहे हैं उनमें हमने दो शब्दों के बारे में भी आपसे बात करी थी। तो राख का खरा का राख होता है, जो जितना खरा होगा वो राख नहीं बन पाएगा ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके साथ ही एक और शब्द आया कि जीना भी कला है। जीना का दो अर्थ होते हैं, एक होता है सीढ़ियाँ और एक होता है जीवन। एक और श्रोता ने लिखा, नवजीवन का उल्टा सीधा दोनों एक जैसा होता है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया हवा, वाह। एक ने लिखा इस गर्मी में कोई हवा कर दे तो मुंह से वाह निकल जाती है जी। मन नम, हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है, मन मन यानी चंचलता का प्रेरक है, तो अगर नम है तो आर्द्रता के लिए कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने। इसके साथ हमारे एक श्रोता ने मन की बात लिख दी कि बहन जब ससुराल जाती है तो भाई को रोना आता है, और शायद अब वही समय वही काल आ रहा है कि बहनें अपने अपने ससुराल जाने की कोशिश करने लगी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है नाम मना। कई लोग होते हैं जो अपने नाम को बताने के लिए मना करते हैं, और शायद वही सही मायने में बड़े प्रस्तोता होते हैं, बड़े कार्य को करने वाले होते हैं। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं बस, सब सब मिलकर बस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है बहुत सारी चीज़ें। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, सबको खुश करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने बात लिखी, मेरे पति देव को हमेशा मदद करने की आदत थी, एक बार उनके मित्र को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मेरे पति ने उन्हें फोटोस्टेट मशीन खरीद कर दिया। आज बात को 20 साल हो गए लेकिन उनकी माँ इस बात को याद करके कभी धन्यवाद देना नहीं भूलती है। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। व्यस्त जीवन शैली, काम के दबाव, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण माता पिता अक्सर बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसके अलावा माता पिता का आपस का व्यवहार और घर का माहौल सीधा बच्चों पर असर डालता है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नींव की कमी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। और आज के कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सौंपते हैं, बस एक प्रार्थना करते हैं, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए भी मुस्कुराने की वजह बन जाइए। साथ दीजिए, हाथ दीजिए और ये जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा।

हम सुन रहे थे गीत बड़े दिल वाले फिल्म से लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देववर्मन के संगीत के साथ सुरीला सफर कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ का ठिकाना होता है। अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए क्योंकि यही पीढ़ी है जो भारत को आगे लेकर जाएगी। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए, विधि प्रवीण जैन को नमस्कार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR को वैध और संवैधानिक करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार समेत अन्य राज्यों में SIR की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उसे निष्पक्ष और शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा तकनीकी चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। श्री कुमार ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा SIR को वैध करार देने के बाद इंडी गठबंधन के नेताओं को देश की जनता से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नालंदा जिले के एक सरकारी स्कूल में मध्यान्ह भोजन के बाद 60 छात्रों के बीमार होने की घटना की एक मीडिया रिपोर्ट

0: स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला मानते हुए जिलाधिकारी से 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज शाम 5 बजे पटना में बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने दाखिल खारिज ई मापी और अभियान बसेरा के लंबित मामलों का तेजी से निपटारे का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि 15 दिनों के बाद एक बार फिर से कार्य निष्पादन की समीक्षा होगी। श्री जायसवाल ने किसान पंजीकरण अभियान को गति देने के लिए परिमार्जन मामलों के शीघ्र निष्पादन के भी निर्देश दिए हैं। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर अब राज्य के नगर निकायों में भी सहयोग शिविर की शुरुआत होगी। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर शिविर की तैयारी का निर्देश दिया है। पंचायतों की तरह नगर निकाय क्षेत्रों में भी प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगेंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि सभी कुलपति हर महीने कम से कम 2 बार अंगीभूत कॉलेजों का निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में सभी कुलपतियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों को समर्थ पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। हालांकि दक्षिण बिहार का तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के दक्षिण मध्य जिलों के कुछ भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इधर बारिश के दौरान मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआ बाग स्थित नया टोला में दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि महिला के पति गंभीर रूप से घायल हैं। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना और नियमित कॉडर की भर्ती के लिए वर्ष 2027 की ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा 1 जून से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक भारतीय सेना भर्ती वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षा संबंधी निर्देश पढ़ सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की खसूसी मुनज़म नज़रसानी अमल SIR को कानूनी और आइनी करार दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सदारत वाली बेंच ने बिहार समेत दिगर रियासतों में SIR के आइनी जवाज को चुनौती देने वाली अर्जियों पर समाअत करते हुए ये फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है और उसे मुनसिफाना और दुरुस्त वोटर लिस्ट तैयार करने का इख्तियार है। जनता दल यू के रियासती तर्जुमान नीरज कुमार ने SIR के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि अपोजिशन की तरफ से इंतखाब के अमल पर सवाल खड़ा करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। जनाब कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए SIR को कानूनी करार देने के बाद

0: इंडे इत्तेहाद के लीडरों को मुल्क के आवाम से बिला शर्त माफी मांगनी चाहिए। महकमा महसूलात और इस्लाहात आराजी के वजीर दिलीप कुमार जायसवाल ने दाखिल खारिज ई नापी और अभियान बसेरा के जेर इल्तवा मामलों का तेजी से निपटारा करने की हिदायत दी है। महकमा की जायजा मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि 15 दिनों के बाद एक बार फिर से कामों के निपटारे का जायजा लिया जाएगा। जनाब जायसवाल ने किसान रजिस्ट्रेशन मुहिम को रफ्तार देने के लिए परिमार्जन के मामलों को जल्द निपटाने की भी हिदायत दी। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी की सदारत में आज शाम 5 बजे रियासती काबीना की मीटिंग होगी। मीटिंग में कई अहम तजावीज़ पर मुहर लगने का इम्कान है। कौमी हुकूक इंसानी कमीशन ने नालंदा ज़िले के एक सरकारी स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद 60 बच्चों के बीमार होने के वाक़े का मीडिया रिपोर्ट की बुनियाद पर खुद नोटिस लिया है। कमीशन ने इसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला मानते हुए ज़िला मजिस्ट्रेट से 2 हफ्ते के अंदर तफसीली रिपोर्ट तलब की है। आम लोगों के मसाइल के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर अब रियासत की बल्दियाती इकाइयों में भी सहयोग शिविर की शुरुआत होगी। इसमें लोगों से मौसूल दरख्वास्तों की बुनियाद पर उनके मसाइल का हल 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने सभी डिवीजनल कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिटेंडेंट, सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट को हिदायत जारी कर शिविर की तैयारियों की हिदायत दी है। पंचायतों की तरह बल्दियाती हलकों में भी हर महीने के पहले और तीसरे मंगल को सहयोग शिविर लगेंगे। रियासत के गवर्नर और चांसलर सैयद अता हसनैन ने कहा है कि सभी वाइस चांसलर हर महीने कम से कम 2 बार मंजूरशुदा कॉलेजों का मुआयना करेंगे। इस सिलसिले में सभी वाइस चांसलर्स को रहनुमा हिदायत जारी किए गए हैं। यूनिवर्सिटी को समर्थ पोर्टल के मौसन नफाज पर जोर देते हुए सभी इंतजामी और तालीमी सरगर्मियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की भी हिदायत दी गई है। हिंदुस्तानी अफवाज में अग्निपथ योजना और मुस्तकिल कैडर की भर्ती के लिए साल 2027 का ऑनलाइन जनरल दाखिला इम्तहान 1 जून से 12 जून तक होगा। उम्मीदवार भारतीय सेना भर्ती वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इम्तहान से मुतल्लिक हिदायत पढ़ सकते हैं और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। रियासत के शुमाली और जनूब मशरक़ी हिस्सों में बारिश के सबब दर्जा हरारत में कमी आई है। हालांकि जनूबी बिहार का दर्जा हरारत अभी भी मामूल से ऊपर बना हुआ है। महकमे मौसमियात से मिली जानकारी के मुताबिक गुज़श्त 24 घंटों के दौरान पूर्णिया और मधेपुरा में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रियासत के जनूब वस्त के ज़िलों के कुछ हिस्सों में तेज़ हवा के साथ बादल की गरज और बिजली गिरने का इम्कान जाहिर किया गया है। इधर बारिश के दौरान मुंगेर ज़िले के कासिम बाजार थाना इलाके के चुआ बाग वाक़ नया टोला में दीवार गिरने से एक खातून की मौत हो गई, जबकि उसका शौहर शदीद तौर से ज़ख्मी हो गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। सुनिए रोजगार सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 के कुल 190 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वें उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianarmy.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता के साथ मैं कनकलता सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे

0: आती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHAIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की

0: पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम से भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा पैचू बावरा फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद का है संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे दाग फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए ची।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत, रामी धुबन फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में राम मूर्ति के बोल और हीरेन बोस के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जलपरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में जफर राही ने इसे लिखा, सुरेश कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। यह था कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। और आज्ञा दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, नमस्कार।

0: सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी सहेलियों सखियों को और सखा को दीपा माहेश्वरी
2: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
3: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है। पूरी सखियों पूरी पसीने में हो रही हैं ये ऊपर से लेके नीचे तक
2: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है।
3: बात तो बिल्कुल सही है और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
2: बिल्कुल होते रहना चाहिए। और गर्मी के ये जो दिन है ना इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, बहुत ज्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें,
3: बिल्कुल
2: तो शरीर में नमी बनी रहेगी।
3: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं तो जैसे कि जलजीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका करते रहें, नारियल पानी लेते रहें ताकि जो खनिज है मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो, और जरूरत ना हो तो भर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकले,
2: बिल्कुल
3: है ना। और साथ ही 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और हम 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है तो पूरी तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने शरीर
2: बिल्कुल अपने
3: पर
2: को पूरा ढक लगा के जिससे कि धूप जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है ककड़ी है इस तरीके जो पानी वाले जो फल हैं जो सैलेड हैं वो आप जरूर खाएं,
3: बिल्कुल,
2: और खाने से ज्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिए, बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय अपने आप को बचा के रखना।
3: जी, और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई मन, क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे भी आए हैं घर में और मेहमान भी हैं, कुछ ना कुछ तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि तला भुना ना हो, पर अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में लें, और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन हल्का इस तरह का रेसिपी बना लें,
2: कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज
3: जी,
2: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
3: हल्का
2: वगैरह।
3: और बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को सखियों को कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे।
2: तरह तरह के चावल के व्यंजन
3: आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस तरह का,
2: बिल्कुल, क्योंकि आजकल सखा भी बनाते हैं।
3: हाँ बिल्कुल,
2: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में। तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा व्यंजन है जो बहुत ज्यादा पसंद है जो आप बनाते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है।
3: बिल्कुल, और आरती आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है आलोचना, तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं लेकिन आप तक पहुंचे हैं, तो आप बताइए इस शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं और क्या आपको लगता है ये
2: आप क्या सोचते हैं इसके बारे में,
3: क्योंकि
2: इसको सकारात्मक तरीके से भी समझा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो सकते हैं,
3: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने उसको जिया है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं बड़े, मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षित, अब जो घर के जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है।

0: किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें अगर हम घर में अकेले हैं, तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए इसके सकारात्मक विचार भी
1: हर चीज के दो पहलू होते हैं,
0: गुण हर एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं। तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
1: कि इसमें नकारात्मक पहलू क्या है, क्या इसके है? और सकारात्मक क्या है। और साथ ही आज हम बात करेंगे साड़ियों संसार लेकर आए हैं,
0: तो साड़ियों के संसार आज कहाँ चलने वाले
1: हैं। आज हम साड़ी लेकर आए हैं कलमकारी साड़ी जो आंध्र प्रदेश में बहुत की है।
0: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो बहुत सारे संदेश लिखने हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
1: तो गीत सुन लेते हैं पहले।
0: चलो चलते हैं।

0: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के
1: बिल्कुल
0: भी। तो
1: हम
0: अब
1: सबकी हैं सखियां सहेलियां, और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन
0: बिल्कुल
1: का और गीतों के सफर का, जहां बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
0: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने
1: बिल्कुल
0: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं। क्योंकि
1: बिल्कुल
0: हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो,
1: बिल्कुल,
0: जो
1: क्योंकि
0: रोज
1: रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए वो
0: हाँ, एक
1: बहुत
0: गरमा
1: एलिगेंट
0: मई लुक
1: गरिमा
0: है।
1: लुक आए।

0: और क्लासी लुक देती हैं, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो
1: बिल्कुल,
0: जो
1: क्योंकि
0: रोज।
1: अब आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो, और साथ में एक जो उनके लुक आए वो
0: हाँ,
1: बहुत
0: एक गरमामयी
1: एलिगेंट
0: लुक
1: गरिमा
0: बने।
1: लुक आए। तो कलमकारी साड़ियां कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती हैं, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियां हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती है,
0: बिल्कुल
1: फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते
0: बिल्कुल,
1: हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
0: बहुत
1: सुंदर
0: बहुत
1: लगती है
0: सुंदर लगती हैं।
1: जी।
0: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी,
1: जी
0: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3,000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का तकनीक अपनाई जाती है।
1: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना,
0: हाँ
1: ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
0: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के लिए एक बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई। मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल हैं। प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहां तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं।
1: जी, अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती विष्णु या महाभारत रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियां कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
0: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं।
1: जी
0: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
1: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में, एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा, जो एक उसमें बॉर्डर, हमेशा जो इसमें आकृतियों की
0: हाँ
1: बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है।
0: जी, कितना कितना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है
1: हाँ,
0: इसका।
1: और हम देखिए ना, जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं,
0: हाँ
1: हम जानते ही नहीं कि ये साड़ी, अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं, तो कितना उसमें
0: बहुत मेहनत
1: उसमें
0: है।
1: कितनी मेहनत है,
0: और
1: परिश्रम है।
0: बिल्कुल, और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
1: क्या बात है, और कलमकारी डिजाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिजाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है।
0: जी, और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है। फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिजाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं।
1: जी, कलमकारी साड़ियां आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि इसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर निकाल लेना है, और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम

0: आज पर उल्टी तरफ से ही स्त्री इसे घरना है।
1: बिल्कुल, और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियां वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियां पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसकी जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और ये सच में ये साड़ियां इतनी सालों तक चलती हैं कि हाँ, नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: मन नहीं लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल मन नहीं लगता,
1: मन नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ
1: बच्चे बूढ़े

0: जवान सबका एक ही है
1: एक
0: बिल्कुल,
1: ही
0: जिसके लिए सब लोग मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते, वो है मोबाइल।
1: बिल्कुल। और ये स्मार्टफोन ना आरती हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
0: जी
1: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा
0: स्मार्टफोन।
1: स्मार्टफोन।
0: जी चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल के ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
0: बिल्कुल, और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
1: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक ही तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी, जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
1: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चल रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ एआई चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं। ये इस तरह की रिपोर्ट आई है। और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा
0: बिल्कुल
1: हो रहा है।
0: ये शोध में सामने आया है
1: जी
0: कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे,
1: जी
0: वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती छाई रहती है
1: और हम
0: है।
1: शिकायतें करते रहते हैं, आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो एक कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए।
0: बिल्कुल, और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी तनाव वाला भी और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, वो भूलने लगते हैं हम चीजों
1: हाँ,
0: को।
1: हाँ ये बात तो है बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर

0: रहे, बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने लगते हैं।
1: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है। और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए, गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सुदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
0: बिल्कुल। और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं, उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
1: ऐसे
0: तो
1: गेम बना रहे हैं ना वो लोग
0: जी,
1: कि जिससे कि वो गेम में लगे रहे, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है, जैसे कि बच्चों में होता है।
0: हाँ,
1: वैसे ही बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि उनको
0: तो ये
1: फायदा
0: और
1: हो।
0: उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली
1: जी
0: चीजें
1: हाँ।
0: हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब
1: बिल्कुल।
0: चीजों से
1: और
0: ना
1: सबसे बड़ी
0: फंसे।
1: बात है दीपक कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके के वर्चुअल दुनिया में रहने के।
0: बिल्कुल। और इसी को लेके देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है। वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
1: बिल्कुल। और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार। जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था। तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था। सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी। जब से आए नेट की आंधी, सब उसमें उड़ चले। उसने इससे सीखा, उससे सीखा, ज्ञान का पान कर लिया। अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ। वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं। नींद उड़ गई उनकी, लेकिन रातों को भी बतियाते हैं। डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल। डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं। बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने, दवा खोज कर खाते हैं। उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है, बहुत
0: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद।
1: जी।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला जी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर।

0: हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल,
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास, आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। साथ में कहती हैं फायदा तो मुझे यही नजर आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज का एक

0: संतुलन उन्हें जरूरी है।
1: ये जो चीजें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी हैं। अगर कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पर खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीजों में ना फंसे, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीजें आती हैं, तो उसमें ना फंसे, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं, वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीजों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है। इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, ये हम कह भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज़ बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फायदेमंद है कि वो अपना दवाइयां मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पर, बहुत फायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आंखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीज़ें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीज़ें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि हम ये चीज़ कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीज़ें जो बुरा असर अगर आप पर नहीं डाल लें तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है।
0: बिल्कुल सही
1: जब तक आप
0: और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
1: जी,
0: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
1: जी, बिल्कुल,
0: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं सीसीटीवी टाइप लगा दी जाती हाँ। हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: बस अगर उसका सही तरीके से संयमित इस्तेमाल करना
1: के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीजें हैं
0: जी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है, मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है। और बताती हैं कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया। अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो विविध त्योहारी भी फोन भी जो होता है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
0: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

0: अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है, फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, आलोचना ऐसे ही तिक्त रस युक्त ऐसी चीज है। जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि तरीके से की जाने चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने के बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए, और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भावना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है, सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है, ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
0: तो अब क्या करना चाहिए?

0: आरती, देखो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही है।
1: खाने की इच्छा, तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहली रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात,
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से 1/2 कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, 1/2 कटोरी चीनी, 5 इलायची।

0: डेढ़ 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। उसी तरह काजू लेना है, एक सर्विंग स्पून किशमिश और एक कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए, आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें आधा घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे आधा घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है। फिर एक गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है, आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम हैं, काजू हैं जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं। और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए, वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे। और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
0: चलिए
1: तो वो बताते हैं कि चावल का डोडा, इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं। चाहे तो बेलकर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: समय हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई हैं?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफकोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ और ऑफकोर्स बोरीवली ही नज़दीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास।
1: बनारस के पास पहले बनारस

0: होता था, अभी
1: जी
0: वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया, और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था, तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके
1: ओहो
0: बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से, और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गांव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जरूर मैं पहली थी, लेकिन आखिरी नहीं हूँ। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियाँ हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
1: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
0: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे,
1: जी
0: क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए, और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली कह सकते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में, कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर, ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है, 12th स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर
1: अट्रैक्ट
0: काफ़ी
1: करती है।
0: अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला एप्रेन भी वाइट होता है, और इमिडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई, जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज़ और हार्ड वर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक, अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ, उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई
1: जी
0: एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
1: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
0: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज, भावनात्मक तरीके से मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया, जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है, जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है, उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसा ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी, आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है, जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है, तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरे से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे एमबीबीएस ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहां इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
1: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
0: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है, और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे
1: जी
0: रिलेट होता है।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं, कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूंकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ,

0: डेंटल आयुर्वेदा फिजियो ऑल केम टुगेदर।
1: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
0: ये ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आएं और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पे सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आएं और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे, तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी है, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि

0: एक दो सब एक साथ एक जुट कर आए और अपने विचारों को, और ऑफ कोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में।
1: जी
0: तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे, तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी है, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है,
1: जी
0: तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें, ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोलें या ना बोलें, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी, और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत, एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है, आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीजें अवेलेबल है जो स्पॉट पे उनको पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज्यादा एजुकेशन हुआ तो उनकी एज की लड़का
1: शादी की
0: मिलेगा
1: दिक्कत
0: कि,
1: आएगी।
0: हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मॉरल सपोर्ट रहेगा। बट
1: बिल्कुल
0: उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज थी वो ज्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी, ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कुकिंग, हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहां पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है, वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वायरमेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टुडे।
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं, शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से, स्किलिंग सेफ, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, वो कोविड से शुरू किया है। फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे, 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ, जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था, हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपने वर्ड

0: लिखे और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही. ऑफ कोर्स पूरी सीएम से डिप्टी सीएम हेल्थ मिनिस्टर सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था.
1: क्या बात है.
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट और फिर उसमें 5 पिलर ऑफ कोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग एज अ गाइडेंस रखा. उनका इतना सिंपलिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो. मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए. तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा. और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया.
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन दिया, एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं. उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो. तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया जो हमारी 5 पिलर जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है.
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे. यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं.
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है. जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है. इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता
1: अच्छा,
0: है.
1: अच्छा.
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं. 3,500 डॉक्टर हर स्पेशलिटी के डॉक्टर इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है. नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था तो जीत भी रहे. तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना. आप इसे प्ले कर सकते हैं.

0: भाई 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली आप ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और अचानक क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहाँ पे मैं भी पहुँची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई, लेकिन मैंने वहाँ पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को जमीन पर डाल के रोड पर भीड़ लगा के बैठे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया, तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया और स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत खराब हो गई थी वहां पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है, तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहां पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए, तो फिर वही होता है ना डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन। तो
0: लेकिन ये कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई, आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
1: पहले तो कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारी ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स टेक्स वेरी सेकंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स, तो यू नो उस टाइम जो इसका है। तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से, तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया, हमारे पास फोटो आए, अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी वो भी MOS

0: की मिनिस्टर थी, तो कई लोगों ने सीपीआर को एक्सेप्ट किया और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में सीपीआर स्टेशन होता है
1: जी जी,
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए, आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर हमारे देश में अगर देख पहले 2% ही था और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को सीपीआर आनी चाहिए
1: जी।
0: तो वो एक अच्छा मकसद है। एक जमाने में मैं 2000 की बात कर रही हूँ कि कार्डियोपल्मनरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था, सीपीआर क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था
1: जी।
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल मेरी कम्युनिटी हो या पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर एक एम्प्लॉई हो वॉचमैन हो, आज लोग इजीली बोल पा रहे हैं कि सीपीआर करना है।
1: तो लोगों में ये अवेयरनेस
0: बहुत,
1: ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है,
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है बट एडॉप्टेशन नहीं आया है और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बुला रही डॉक्टर हम सीपीआर, मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं, तो उसको ये जेन्युइन डर था, तो मैंने बोला देखो अगर आप सीपीआर नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं, हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप सीपीआर कर रहे हो और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप सीपीआर करो, एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा आपका पेशेंट चला जाएगा, एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30-60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीजें जाने या ना जाने वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है, और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में सीपीआर दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है और इजिली मॉड्यूल्स हैं, तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे सीपीआर सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है, तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो, डरना नहीं चाहिए क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं वहां पे डॉक्टरों को सीपीआर आता ही आता है, वहां पे जाके बैच बना के कर सकते हैं या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फोन करके अगर सीपीआर सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूंगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे, तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता। और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली। तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है। सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवरलुक किया। सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर। सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस। और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमोसोनोग्राफी सुबह में 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को CA था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी।
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में। तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा। पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्ट

0: करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास। ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है, आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का। मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है। हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है। तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है और उसकी पूजा के लिए, जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूंगी, अरे मैं उस जगह जाऊंगी उसके बाद करूंगी। कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था। तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी, तब मैं बायोप्सी करूंगी, तब मैं ये करूंगी। मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली। तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं था,
1: प्रायोरिटी नहीं थी,
0: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने। वो सिर्फ बोली थी अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया। तो इन्होंने बहुत सारी चीज एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज़ के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं। और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइम मिली, उसका फॉलो अप उसके। तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की, वो रेगुलर चेकअप पे कर। 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है। अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल, या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद, या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली। ये बेहद खतरनाक है,
0: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो, उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी। तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था, लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6-7 महीने किए, और जब आई तो काफी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं, वो जो सोशल मीडिया होता है, वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन, आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज उसकी यूज करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज्यादा है, एज अ जोकिंगली, बट ये ट्रुथ है कि

0: इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको, आपको तो
1: जी
0: इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाजम ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है, तो उसके साइड इफेक्ट हुए,
1: जी
0: उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल
0: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी।
1: सेम दवा
0: हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, ये हर घर की है, क्योंकि
1: जी
0: उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये दर्द का है, तो
1: यस
0: वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उसे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया, और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम करी, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गेन्स पे डैमेज करके चली आई हैं।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता। और यहां एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाजा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: मेरे डैड बचपन में काफ़ी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके पास फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे, जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे। लेकिन ये बात मुझे इम्पोर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है, जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक
1: जी
0: डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है, वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, बट जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो
1: जी
0: उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना,
0: पापा जल्दी आ जाना, ये
1: क्या
0: गाना मुझे
1: बात है,
0: बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज टू सिंग अ लॉट।
1: सुनते ही गाना।

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ इज वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग, सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट इस ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी। मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं, ज़्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी।
0: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीज़ें लॉन्च करने जा रही हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
1: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है। पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में, और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के

0: 58 मेडिकल बॉडी हर स्पेशलिटी के, 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 एमपी पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग. और रिसेंटली एक एमपी फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया, जिसमें 34 एमपी एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन. बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज करें, न कि क्योज में यूज करें. और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है. तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है. अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं. और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर. सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं. और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी हो, सब में ये बातें चल रही हैं. और मैं एक जरूर बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं. वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव. इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
1: जी,
0: शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए. तो ये बहुत बड़ा चीज है. और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें.
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सो मच.
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से. रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान. आज के मेहमान.

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 बीईएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैं हूं जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूं कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूं, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूं। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण के लिए 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर

0: समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने आज केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी। वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन। भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6:00। शाम 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किया जाएगा भोजपुरी बुलेटिन समाचार। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से शाम 6:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर।

भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत की प्रस्तुति होगी शाम 6:40 पर। शाम 7 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। गुड इवनिंग रोहतास। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:15 पर। शाम 7:25 पर प्रादेशिक समाचार और ज़िले की हलचल के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र में। हेलो मनपसंद फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:50 पर। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

शास्त्रीय गायन पर आधारित सुर सौरभ कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे। रात्रि 9:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई

मुंबई केंद्र की सभा में, और तब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से रात्रि 10 बजे हम प्रस्तुत करेंगे गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने की प्रस्तुति होगी रात्रि 10:30 पर, रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार बारी बारी से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

राम तेरे घर आएंगे एल्बम का ये टाइटल भजन अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज़ में। रवि चोपड़ा के लिखे इस भजन की धुन बनाई थी खुद अनूप जलोटा ने। अब आइए भक्ति संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएं कबीरा एल्बम का भजन जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे।

जुबिन नौटियाल से अभी आप सुन रहे थे कबीर अमृत बाणी। इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदन यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। समय मिलाइए, शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों को रीभा का प्यार भरा नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर। आज हम चर्चा करेंगे खर्च और बचत के बीच संतुलन रखें। योजना में आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानेंगे। कार्यक्रम के बीच बीच में गीत संगीत का आनंद लेंगे। रसोई घर में आम के खट्टे अचार कैसे बनाते हैं जानेंगे। सखियों, खर्च और बचत के बीच सही संतुलन बनाने का अर्थ है आप अपनी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखें। इसके लिए सबसे प्रभावी तरीका है 50-30-20 का नियम अपनाना। इसके अनुसार अपनी आय को तीन भागों में बांटकर 50% जरूरतों पर खर्च करें। घर का किराया, किराने का सामान, बिल और बीमा, जिन्हें टाला नहीं जा सकता। वहीं 30% अपने शौक पे खर्च करें। बाहर खाना, फिल्में, छुट्टियां सही तरीके से व्यतीत करना, शॉपिंग करना। और बचे हुए 20% आपातकालीन फंड, रिटायरमेंट की योजना और दीर्घकालिक निवेश के लिए रखना बेहद ज़रूरी होता है। हर महीने वेतन आते ही बचत राशि को अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का नियम बनाएं। अपने मासिक खर्चों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे बचाने के लिए पहले बचत करें और फिर खर्च करें। महीने भर में आप जो भी खर्च करते हैं उसे डायरी में लिखें या अपने फ़ोन में किसी ऐप के जरिए ट्रैक करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं और आप कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे हैं। घरेलू बचत करने के लिए सबसे पहले अपनी आय और खर्चों का एक स्पष्ट बजट बनाएं। फालतू खर्चों को कम करके और घर का रिकॉर्ड रखकर आप आसानी से धन बचा सकते हैं। बाहर खाने, ऑनलाइन शॉपिंग और मनोरंजन पर होने वाले उन खर्चों को सीमित करें जिनके बिना काम चल सकता है। बाज़ार जब भी निकले लिस्ट के साथ निकले, क्योंकि कई बार जब हम बाज़ार से लौटते हैं तो उन चीज़ों को साथ में ले आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। ज़रूरत की चीज़ों को ही खरीदें, बाकी बचे पैसे जोड़ कर रखें। अपनी बचत को घर में रखने

वजह सुरक्षित सरकारी योजनाएं जैसे PPF, सुकन्या समृद्धि योजना या बैंक RD में लगाएं। किसी भी अनहोनी या चिकित्सा आपातकाल के लिए कम से कम 6 महीने के खर्चों का फंड अलग से सुरक्षित रखें। छोटी छोटी बचत करने की आदत डालें, बिजली पानी बचाएं, घर से बाहर जाते समय लाइट पंखे बंद करें और पानी की बर्बादी को रोकें। किराने का सामान और रोज़मर्रा की ज़रूरतों जो हैं आपकी, वो सुपरमार्केट से या थोक बाज़ार से ही खरीदें ताकि कुछ पैसा बच सके। आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन को पूरी सुख सुविधाओं के साथ जीना चाहता है। वह अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहता है। इसके लिए एक अच्छी आर्थिक योजना का होना भी बेहद ज़रूरी है। अपने भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए, अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए पैसे बचाना बहुत ही आवश्यक होता है। बचत करने के लिए व्यक्ति को अपने खर्चों को नियंत्रित करना पड़ता है। अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम आवश्यक खर्च करते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने हम कुछ ऐसे खर्चे भी कर जाते हैं जो आवश्यक नहीं होते हैं। वहीं खर्चे फिजूल खर्च में गिने जाते हैं। इन खर्चों पर रोक लगाएं, खर्च कम करें, सूझबूझ के साथ खर्च करें। आजकल EMI में खरीदारी करने का चलन हो गया है, जिस वजह से लोग महंगी वस्तुएं खरीद लेते हैं। महंगी वस्तुएं लेना गलत नहीं है, फिर किस्त पर लालच में आकर लेना गलत है। पैसे बचाना और पैसे बचाने के उपाय जानना जीवन में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें आर्थिक तौर पर सुरक्षित रखता है। तो आइए अब चर्चा को कुछ देर के लिए ही रोकते हैं और सखियों के साथ एक गीत सुनते हैं।

0: सखियों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार, अपनी थाली में हरी सब्जियां, मौसमी फल और प्रोटीन को शामिल करें। फिट रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें ताकि आपका शरीर और दिमाग ऊर्जावान बना रहे। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को नज़रअंदाज न करें और समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देती है। पात्रता मानदंड की बात करें तो इसमें भूमिहीन, दिहाड़ी मजदूर, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार और बेघर लोग शामिल हैं। योजना का लाभ मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटा के आधार पर गरीब और वंचित परिवारों को स्वतः ही मिलता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट आयुष्मान भारत योजना पर जाएं, अपने आधार कार्ड से लॉगिन करें और अपनी पात्रता चेक करें। वहीं ऑफलाइन की बात करें तो इसके लिए नज़दीकी जनसेवा केंद्र या किसी सूचीबद्ध अस्पताल में जा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य बीमा और बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से लेकर दवाइयां और सर्जरी तक का पूरा खर्च सरकार उठाती है। तो आइए अब एक और गीत सुनते हैं।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो, वहां भी दिल कहने से डरता है। और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सखियों, भारतीय थाली आम के अचार के बिना अधूरा है। आम का अचार भारतीय थाली की जान है। दादी नानी के जमाने वाला पारंपरिक चटपटा और सालों साल चलने वाला आम का अचार बनाने के लिए कच्चे सख्त आम के टुकड़ों को नमक और हल्दी लगाकर धूप में सुखाया जाता है। फिर इसमें सौंफ, मेथी, कलौंजी, राई और सरसों के तेल का सटीक मिश्रण मिलाया जाता है। अगर आपको या आपके परिवार को थोड़ा मीठा स्वाद पसंद है तो आम की लौंजी, जिसे कि खट्टा मीठा अचार बोला जाता है, सबसे बेहतरीन विकल्प है। यह तुरंत खाने के लिए तैयार भी हो जाती है। इसके लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए, जो इस प्रकार है। कच्चे आम 500 ग्राम लंबे टुकड़े में कटे हुए, गुड़ या चीनी 300 से 400 ग्राम, पंचफोरन, सौंफ, जीरा, मेथी, कलौंजी, राई एक छोटा चम्मच, यानी एक एक छोटा चम्मच, नमक एक छोटा चम्मच, काला नमक आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, तेल एक बड़ा चम्मच। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल को गर्म करें और उसमें पंचफोरन का तड़का लगाएं। अब इसमें कटे हुए आम के टुकड़े डालें और 2 मिनट तक भूनें। इसमें 1 कप पानी, नमक और काला नमक डालकर इसे ढककर तब तक पकाएं जब तक आम नरम ना हो जाए। जब आम पक जाए तो इसमें गुड़ के पिघलने और चाशनी के गाढ़ी होने तक इसे पकाएं। ठंडा होने के बाद इसे कांच के जार में भरकर कई महीनों तक फ्रिज में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अचार को सालों साल सुरक्षित रखने के लिए अचार हमेशा सूखे और साफ चम्मच से निकालें। तेल की मात्रा हमेशा इतनी रखें कि अचार उसमें डूबा रहे। इससे अचार में फफूंदी नहीं लगती है। अचार को कांच और चीनी मिट्टी के जार में ही रखें, प्लास्टिक के डब्बे में रखने से बचें। तो आइए सखियों, एक और गीत सुनते हैं।

सखियों, मौसम का ख्याल रखते हुए आप अपने आप का ख्याल रखें। जिस तरीके से टेम्परेचर तापमान बढ़ रहा है, इसमें आप खूब पानी पिएं। वैसे फलों का यूज़ करें जैसे खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, सत्तू का शरबत पिएं, बेल का शरबत पिएं, नींबू पानी पीते रहें ताकि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन की कम ना हो और आपका बॉडी हाइड्रेट रहे। अपनों का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। और जैसा भी मौसम है, हमें अपने खान पान और पहनावे पे ध्यान रखें, उस मौसम का आनंद ही लेना चाहिए। तो सखियों, अब आप सबसे विदा लेने का समय हो गया है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। तो अपनी सखी रिभा को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत।

0: इसी के साथ लोकधारा, माफ़ कीजिएगा, इसी के साथ भोजपुरी लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी बुलेटिन समाचार।
1: वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के वैध और संवैधानिक मान लेबा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अध्यक्षता वाली बेंच बिहार समेत दूसरा राज्यन में एसआईआर के संवैधानिकता के चुनौती देवे वाली याचिका पर सुनवाई करत इ फैसला सुनौले बिया। बेंच कहलस कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और ओकरा निष्पक्ष और साफ सुथरा वोटर लिस्ट तैयार करे के पूरा अधिकार बा। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर अपन बात रखत कहलन कि विपक्ष तकनीकी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा के जनता के भरमावे के कोशिश करत रहे। श्री कुमार कहलन कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईआर के सही ठहरावे के बाद अब इंडी गठबंधन के नेता लोग के देश के जनता से बिना कोनो शर्त के माफी मांग लेवे के चाही। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना और नियमित काडर के भर्ती खातिर साल 2027 के ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 1 जून से 12 जून तक आयोजित कैल जाय। उम्मीदवार आधिकारिक भारतीय सेना भर्ती वेबसाइट से अपन एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा से जुड़ल सब जानकारी लिहल जा सकता। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़न कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लइकन के आगू बढ़ावे खातिर सरकार पूरी तरह से काम करत बिया। मुख्यमंत्री आज पटना में जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत छात्रवृत्ति पावे लइकन के साथे बातचीत करत रहलन। उ बतौलन कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 1,04,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रन के फायदा मिलल बा। वही जा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति से ए साल 1,41,000 अनुसूचित जनजाति के लइकन के लाभ पहुँचल बा। ए मौका पर श्री चौधरी जनजातीय इलाका में पर्यटन घूमे फिरे के बढ़ावा देवे खातिर होम स्टे विकसित करे के ऐलान कैलन। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन कहले बाड़न कि सब कुलपति हर महीना कम से कम 2 बेर अंगीभूत कालेजन के जांच करी हैं। इस संबंध में सब कुलपति लोग के दिशा निर्देश दिहल गइल बा। विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल के बढ़िया से लागू करे और पढ़ाई लिखाई के काम सबके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आवे के निर्देश दिहल गइल बा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नालंदा जिला के एगो सरकारी स्कूल में मिड डे मील खैला के बाद 60 लइकन के बीमार होके के घटना के मीडिया रपट पर खुद संज्ञान ले लेबा। आयोग एकरा के मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामला मानता। जिलाधिकारी से 2 हफ्ता के भीतर पूरा विवरण मंगले बा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल दाखिल खारिज ई

0: व्यापी अउरी अभियान बसेरा के रुकल मामला सब के तेजी से निपटावे के हुकुम देले बाड़न। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उ कहलन कि 15 दिन के बाद एक बार फिर से काम के जांच कैल जाय। श्री जायसवाल किसान पंजीकरण अभियान के तेज करे खातिर परिमार्जन के मामला सब के भी जल्दी से निपटावे के आदेश देले बाड़न। आम लोगन के परेशानी के निपटारा खातिर अब पंचायतन के तर्ज पर राज्य के नगर निकायन में भी सहयोग शिविर के शुरुआत कैल जाय। एमे लोगन से मिले वाले आवेदन के आधार पर उन्हन के समस्या के समाधान 30 दिन के भीतर कैल जाय। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सब प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक औरी पुलिस अधीक्षक लोग के निर्देश जारी करके शिविर के तैयारी करे के कहले बाड़न। पंचायती नियर नगर निकाय क्षेत्र में भी हर महीना के पहला औरी तीसरा मंगर के सहयोग शिविर लगावल जाय। प्रदेश के औरी दक्षिण पूर्व हिस्सा में लगातार हो रहल बरखा के कारण तापमान में गिरावट आयल बा। एकरा साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जा समाप्त भई।
1: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर।

सब गांव घर सुनने वाला श्रोता भाई बहन के जगत भाई के नमस्कार बा। श्रोता भाई बहन लोग, आज जवन हमने के अपन गांव घर में कार्यक्रम जाने के बा वह तरह से बा। सबसे पहले एगो जाना ली चर्चा, चर्चा के विषय रहे बकरीद पर सामाजिक सद्भाव जरूरी बा। फिर एगो लोकगीत के आनंद लिहल जाए। एकरे बाद एगो वार्ता के जानकारी कल जाए, आपन आचार व्यवहार रखी ठीक ठाक। एकरे बाद एगो और जानकारी हुई स्मार्टफोन से बच्चन के बचाई। फिर मौसम के पूर्वानुमान जनला के बाद कार्यक्रम के समापन। श्रोता भाई, जैसन कि हम कहले हैं कि सबसे पहले बकरीद पर बतकही हुई। बकरीद यानी कि ईद उल जहा पर सामाजिक सद्भाव आपसी भाईचारा बना रखल देश के साझा संस्कृति खातिर अत्यंत जरूरी बा। ई त्यौहार त्याग, सब्र और इंसानियत के संदेश देला। इस दौरान सब नागरिक समुदाय एक दूसरा के धार्मिक भावना के सम्मान करे के चाहे, सद्भाव का शांति सुनिश्चित करे खातिर कुछ ध्यान दिहल जरूरी बा। जैसे कानून के पालन, सब प्रतिबंधित पशु जैसे गाय बछड़ा आदि के कुर्बानी से बचत जरूरी बा। आदेश के नियम के सख्ती से पालन करे के पड़ी। सार्वजनिक स्थान से परहेज करी। कहीं भी सार्वजनिक स्थान, खुला सड़क चाहे विवादित स्थल पर कुर्बानी मत करी। केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित कैल गई उहजंगे स्थान पर करी। स्वच्छता

के भी ध्यान दिहल जरूरी बा, कुर्बानी के बाद बचल अवशेष यानी कि जौन वेस्ट बा ओकरा के खुला नाली में मत बहवाई, सीवर मत बताई, एकरा के उचित तरीका से जमीन में दफन कर दी ताकि निगम द्वारा तय कर गई ओकरा पर भी हमनी के डाल सकतनी या रख सकती। सोशल मीडिया पर भी संचय कल जरूरी बा, सोशल मीडिया पर कौनो भी ऐसा तस्वीर वीडियो चाहे संदेश के साझा मत करी ओकरा से बची, जेकरा में कौनो समुदाय के धार्मिक भावना के आहत होके। प्रशासनिक जौन निर्देश बा राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जारी जौन गाइडलाइन कर गेल बा ओकरा में सहयोग करी, शांति व्यवस्था बनाए रखी, पुलिस द्वारा जगह जगह पर शांति समिति के बैठक भी लोग करेला ओकर समय पर साथ दी, जेकरा

सोशल मीडिया पर भी संचय कल जरूरी बा। सोशल मीडिया पर कौनो भी ऐसन तस्वीर वीडियो चाहे संदेश के साझा मत करी, ओकरा से बची, जेकरा में कौनो समुदाय के धार्मिक भावना के आहत होके। प्रशासनिक जौन निर्देश बा राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जारी जौन गाइडलाइन कल गई बा, ओकरा में सहयोग करी, शांति व्यवस्था बनाए रखी। पुलिस द्वारा जगह जगह पर शांति समिति के बैठक भी लोग करेला, ओकर समय पर साथ दी, जेकरा में जौन तरह के बकरीद पर्व बा काहे मनावल जाला, ये पर्व पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह हुक्म के अपन बेटा के हजरत इस्माइल के दिहल गल सर्वोच्च कुर्बानी आ उनकर अटूट याद में ई मनावल जाला। एकरा चलते हमनी के और भी तरह के बा, जैसे देखल जाओ ओकरा में ई त्यौहार से जुड़ल बहुत कुछ बात बढ़ुए, कुर्बानी की ऐतिहासिक घटना रहा। इस्लामिक मान्यता के अनुसार अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को परीक्षा लेवे खातिर उनकर सबसे प्यारा चीज के कुर्बानी मंगल। इब्राहिम अपन बेटा इस्माइल के बेहद प्यार करत रहा, लेकिन अल्लाह के आदेश के पालन करे खातिर वो अपना बेटा के बलि देवे के निर्णय लेला। जब हजरत इब्राहिम अपन बेटा के गर्दन पर छुरी चलावे लगले तो अल्लाह के अद्भुत कुदरत से हजरत इस्माइल के जगह एक दुम्बा यानी कि भेड़ जैसा जानवर कुछ वहाँ आ गई। इस तरह से बेटा के जान बच गई और इब्राहिम की परीक्षा पूरी। लेकिन बलि के असली अर्थ का बा, इ पर्व के सिर्फ पशु के कुर्बानी देवे के प्रतीक ना हो, बल्कि ओकर अहंकार त्याग और ईश्वर यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण और वफादारी है। बहुत से लोग का करेला कुछ मांस के बंटवारा, एक दिन बकरा या भेड़ जैसा वैध जानवर के कुर्बानी देला, एकर मांस के तीन बराबर हिस्सा में बांटल जाला, एक हिस्सा परिवार खातिर, दूसरा हिस्सा रिश्तेदार खातिर या पड़ोसी खातिर और तीसरा हिस्सा गरीब तथा जरूरतमंद के दान दिया जाला। इस बकरीद के पर्व इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत विशेषकर हज यात्रा के संबंध में होखे के समय मनावल जाला। इसे हमनी के जौन इबा ओकरा में मुसलमान भाई बकरीद के मौका पर सुबह उठ के नया कपड़ा पहन के ईदगाह में मस्जिद में जा के नमाज अदा करके और सामूहिक नमाज अदा होला। समाज के बाद पैगंबर इब्राहिम के अल्लाह के प्रति त्याग और समर्पण के याद में बकरा और बैल जानवर के कुर्बानी दिया जाला। तो इस तरह से कुर्बानी कि जौन हमनी के याद दिला रहल बा आपन विश्वास के दृढ़ रखे खातिर अल्लाह के हर चुनौती के आपन मार्गदर्शन करत रहे के बा और आपन भरोसा के फल देता। ऐसे ईद युद्ध आधा पर पैगंबर इब्राहिम के बलिदान के कहानी आपन परिवार के साथ साझा करके कुछ समय निकालल जरूरी बा। इकरा अलावे हमनी के ई भी देखल जाए मुसलमान हर साल सबसे शुभ दिन के कुर्बानी देके पैगंबर इब्राहिम को याद करके, ताकि पैगंबर इब्राहिम के ईश्वर के आज्ञा माने और दुनिया के सबसे प्रिय चीज अपन बेटा पैगंबर इब्राहिम के बलिदान करने के तत्पर में याद कर जा सके। इस तरह से जौन बा अब एकरा में ये भी देखल जा रहा बा कि कुर्बानी के परंपरा जौन बा पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के हुकुम पर जो बलिदान के अटूट परीक्षा के समर्पण के याद में शुरू भई, ई ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा के शुरुआत से जुड़ल

कहानी है, जवन इस्लाम मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम के सपना में अल्लाह के तरफ से आदेश मिला रहे और एक महान परीक्षा भी भइल, जेकरा चलते चमत्कार भइल और तब जाके त्यौहार मनावल जाला। लेकिन एकर उद्देश्य यही बा कि आज दुनिया भर के मुसलमान इस समर्पण के याद करके हर साल बकरीद के मौका पर जानवर के कुर्बानी दे रहा। लेकिन मूल उद्देश्य ई बा अल्लाह के प्रति अपन वफादारी जतावल और कुर्बानी के मांस को गरीब में जरूरतमंद के बांट कर नेक कमाई। इसे इस्लाम के बुनियादी धार्मिक इतिहास के अनुसार सबसे पहले जमीन पर कुर्बानी हजरत आदम के पुत्र हरबल द्वारा दिहल गए रहे। लेकिन वर्तमान में जवन कुर्बानी के त्यौहार मनावल जाला हजरत इब्राहिम के बलिदान को याद दिलावेला। इसे हमनी के हर केहू के चाहिए जवन सामाजिक सद्भाव में रह के ही आपस में बकरीद के त्यौहार मनावे के जरूरी पड़ुए। अब तनिका बत कही भइल, अब तनिका हमने के मन मनसाइन हो जाए, तो मन मनसाइन खातिर मनोरंजन ओझा से एगो गीत सुन लिया जाए।

0: देखें कितना बढ़िया यहाँ के पूर्वी कौन नगरिया मुरा यह गीत खातिर यानि कि पूर्वी खातिर मनोरंजन ओझा के मोटरी भर धन्यवाद दे दिया जाओ। देखी एक चीज बा हमने के आपन परिवार बाद में भी हमने के पुरल बन जाए लेकिन आपन आचार आप व्यवहार अगर ठीक ठाक रही तो बढ़िया से चली। इस पर एगो हमने के वार्ता सुनल जाओ वार्ताकार बने नीलांबर राही आवल जाए यहाँ से जानकारी लिया जाए।
1: हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है, उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है, वह हमारे विचारों से बनी हुई है। अगर मनुष्य बुरी कल्पना से बोलता या काम करता है तो क्लेश व दुख उसके पीछे ऐसे चलते हैं जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे जो उसे खींचते हैं। जो मन वचन व काया रूपी अमृत से परिपूर्ण है, परोपकार द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले हैं, दूसरों के स्वल्प गुणों को बड़ा मानकर प्रसन्न रहने वाले हैं, ऐसे सज्जन बिरले ही होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना आचरण इतना परिशुद्ध रखे आईना की तरह कि वह बिल्कुल साफ दिखे। हमारी कार्य प्रणाली ऐसे हो जो दूसरों की प्रेरणा का स्रोत बन जाए। वह कार्य इतना सरल साफ और मर्यादाओं से मर्यादित हो जाए कि वह एक सुदृढ़ नींव बनकर शिक्षा बनकर नीति बनकर रह जाए। हमारा व्यवहार ऐसा न हो कि दूसरों को अंगुली उठाने का अवसर मिल जाए। अच्छा आचरण सुंदर विचार किसको पसंद नहीं होता। हम अपने आचरण को छोड़ चुके हैं, अपने पथ को भूल चुके हैं। हमें याद रहे कि वह गौरवशाली सुंदर कृति सभी मर्यादाओं से मर्यादित राम कृष्ण बुद्ध महावीर मोहम्मद साहब कबीर साहब तुलसी सूरदास मामीरा सहजो महर्षि में ही के सुंदर आचरण मृदुल व्यवहार को कौन नहीं जानता। ऐसा हमें ही होना चाहिए। यदि कोई हजार दोष सिद्ध करे तो उसके लिए हमें जहाँ तक हो सफाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सफाई देने से दोषों की जड़ जमती है तथा दोष बतलाने वाले के चित्त में भविष्य के लिए रुकावटें होती है। इससे हम निर्दोष नहीं हो पाते। दया के समान कोई धर्म नहीं, हिंसा के समान कोई पाप नहीं, ब्रह्मचर्य के समान कोई व्रत नहीं, ध्यान के समान साधन नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं, ऋण के समान कोई दुख नहीं, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं, पापी के समान कोई दुख नहीं। ये एक एक भाव अपने अपने स्थान पर अपने अपने विषय में सबसे बढ़कर है। पंच पापों से हमें

सदैव बचते रहना चाहिए। ये पंच पाप हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। अगर लोग विचार करें तो देवता भी मानव तन की प्रशंसा करते हैं। अगर जिंदगी को स्वर्ग बनाने की तमन्ना है तो पति और पत्नी, सास बहू, बाप तथा बेटा को आपस में यह समझौता करना होगा कि अगर एक आग बने तो दूसरा पानी बन जाएगा। अपने घरों में थोड़े से पानी की व्यवस्था करके रखिए। पता नहीं कब किसके दिल में क्रोध की आग भड़क उठे। क्रोध आग है। अपने घरों में सहनशीलता और शांति का जल तैयार रखिए। पता नहीं कब आपका घर क्रोध की लपटों से घिर जाए। ध्यान रखिए, पति कभी आग बने तो पत्नी पानी बन जाए, और पति पत्नी कभी अंगार बने तो पति जलधार हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कपट, अभिमान, अहंकार, क्रूरता, निर्भयता, अज्ञान, संशय, भ्रम, निद्रा, आलस्य, विक्षेप, चिंता, शोक, भय, उद्वेग, वैर, कुटिलता, नीचता, नास्तिकता तथा छल, छिद्र, झूठ, चोरी, डकैती, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, मांस भक्षण, मदिरापान, मादक वस्तुओं का सेवन, जुआ आदि दुराचार है। यह सर्वथा त्याग कर देना चाहिए तथा इसके विपरीत क्षमा, दया, अहिंसा, शांति, संतोष, शम, दम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तेज, विनय, क्षमता, सरलता, धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता, निर्लेपता, अस्तिकता, श्रद्धा आदि सद्गुण तथा दान, तप, व्रत, उपवास, सेवा, पूजा, सत्कार, सत्य भाषण, स्वाध्याय, परोपकार, माता पिता, गुरुजनों तथा दुखी अनाथ की सेवा आदि सदाचार हैं। ये दैवी संपदा के लक्षण हैं। ये हमें मौजूद होने चाहिए। जो अभिमान अर्थात अहंकार है, वह सब शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है। इस वास्ते अभिमान नहीं करना चाहिए। छल, कपट व कृतज्ञता से अपना ही हृदय दुखित होता है, तो दूसरों की क्या कथा कहानी चाहिए। छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर और दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वः प्रयोजन सिद्ध करना कृतज्ञता उसको कहते हैं। किसी के लिए हुए उपकार को न मानना, क्रोध आदि दोष और कटु वचन को छोड़ शांत और मधुर वचन ही बोले और बहुत बकवाद न करे। जितना बोलना चाहिए उससे न्यून व अधिक न बोले। माता पिता आचार्य अपने संतान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करे और यह कहे कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उनको ग्रहण करो और जो जो दुष्ट कर्म हो उनका त्याग कर दिया करो। जो जो सत्य जाने उनका प्रकाश और प्रचार करे। किसी कवि का वचन है कि वे माता और पिता अपने संतान के पूर्ण वैरी हैं जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति न कराई। वे विद्वानों की सभा में वैसे विस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। यही माता पिता का कर्तव्य कर्म, परम धर्म और कृति का काम है। जो संतान को तन मन धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करे। वाणी में आश्चर्यजनक शक्ति होती है। वह दहती हुई क्रोधाग्नि को चंदन, चंद्र, उसीर, हिमोपवल और हिम रजनी में परिवर्तित कर सकती है तथा सौम्य, शांत, शीतल एवं गंभीर उर्वन में प्रचंड दावानल प्रज्वलित कर उसे भस्मासात कर सकती है। वाणी आशा पर पानी फेर सकती है और वाणी ही निराश्रय को आश्रय देने वाली होती है। वाणी द्वारा ही उत्थान और पतन होता है। वाणी से ही विटप, बिल्व और विध्वंस होता है तथा वाणी से ही विजय, वैभव और विश्व बंधुत्व होता है। वाणी की असंयमितता के कारण ही कलह, कष्ट और मौत होती है। वाणी से ही प्रेम, द्वेष
और

0: घृणा भी होती है। वाणी से ही मिलन और बिछड़न अर्थात योग और वियोग होते हैं। वाणी से ही हानि और लाभ दोनों होते हैं। हमें चाहिए कि हम वाणी पर संयम रखें और मजाक में भी हम ऐसी वाणी का व्यवहार नहीं करें जो अन्यों के हृदय में तीर जैसा घाव करे, अर्थात कर्कशा वाणी तर्कस से निकले बाण की भांति होती है। हमारी वाणी भी अन्य और वेधक न हो, कहने की आवश्यकता नहीं। देवी द्रौपदी की दिल्लगी ने ही कुरुक्षेत्र में महाभारत संग्राम मचाकर सर्वनाश करवाया। यदि मजाक में दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा द्रौपदी नहीं कही होती तो महाभारत युद्ध नहीं होता और नो भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण होते। वाणी का संयम वाचिक तप है। ऐसी वाणी नो बोलो जो असत्य व कटु हो और ऐसा सत्य भी नहीं बोलो जिससे दूसरों के मन में आग लग जाए, शांति अशांति उत्पन्न हो जाए। अर्थात जो मुख में संयम रखता है, मनन करके बोलता उद्दत नहीं है, अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, उसका संभाषण मधुर होता है। सत्य सुहाता वचन कहिए, कटुक वचन मत बोल रे कि मधुर ध्वनि का गुंजन करिए। भले ही लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, पिट जाइए, मगर बोलचाल बंद मत करिए, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है। गुस्से के बाद आदमी जो बैर पाल लेता है वह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे बैर नहीं पालते। वह इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। प्रथम भोजन संयम की, द्वितीय वचन संयम की। जैसा आहार वैसी डकार, भोजन और पानी के आधार पर ही हमारी वाणी है। इसलिए हमारा भोजन पदार्थ सात्विक हो और उसके लेने की मात्रा का भी परिज्ञान हो, क्योंकि मात्रा भेद से गुण भेद होते हैं। जिभ्या इंद्री एके नाल, जो रोके सो वाचे काल। महात्मा गांधी जी ने भोजन संयम के लिए कितना अच्छा कहा है। आप अपनी भूख बुझाने के लिए भोजन करें, जीव स्वाद के लिए नहीं। भूख के वक्त सूखी रोटी भी मीठी लगती है और बिना भूख के आदमी को लड्डू भी फीके और वे स्वाद मालूम होते हैं। मनुष्य खाने के लिए जीता है और संयमी पुरुष जीने के लिए खाता है। आप मिर्च मसाले शराब और दूसरी चीज़ों को छोड़ दें, बीड़ी और सिगरेट तो केवल मानव के लिए जहर है, लेकिन शराब तो पूरी मानवता के लिए जहर है। नदी तालाब और समुद्रों में डूबकर अब तक जितने लोग नहीं मरे होंगे, उससे भी कहीं अधिक लोग शराब के छोटे से प्याले में डूबकर मर चुके हैं। इस अंगूर की बेटी ने पता नहीं कितनी माँ के बेटा का बेड़ा गर्क कर रखा है। दुनिया में अगर शराब नाम की चीज न होती, दुनिया में शराब नाम की चीज नहीं हुआ होती तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। इस नशे ने व्यक्ति परिवार समाज देश और दुनिया की दशा और दिशा दोनों बिगाड़ रखी है। शराब पिए तो यह सोचकर पिए कि अब मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। बाबा गोरखनाथ का उपदेश जीवन में धारण करने योग्य है। हब की न बोलिबो, ठब की न चलिबो, धीरे धरिबो पाँव, गर्व न करिबो, सहजे रहिबो, भनंत गोरख राव। गोरख कहे सुनहुर अवधु, जग में ऐसे रहना, आंखें देखिबा काने सुनिबा, बोलिबा अमृतवाणी, अगिका अग्नि होइबा अवधु, आपन होइबा पानी।
1: देखिए श्रोता भाई, कितना बढ़िया यहाँ के फरिया फरिया बतौनी आचार व्यवहार में के ठीक ठाक रखी। अब एगो देखी जानकारी बा कि बहुत से हमने के स्मार्टफोन बच्चन के देते थे जा, लेकिन स्मार्टफोन के बच्चन के लत से बचावे के चाहिए। नो स्क्रीन जोन नियम, आउटडोर खेल सकारात्मक गतिविधि प्रोत्साहित करे के चाहिए। मैंने उनकरा के बाहर खेल के समय दी खिलाई, गेंदा भर फूल मोबाइल से दूर लेके रखल बा, एकरा के सीमित समय दी। भोजन करत समय ओकरा के भी एक आधा घंटा के लगभग एकाध घंटा पहले घर में नो एंट्री जोन लागू करी, खुद मॉडल बनाई ताकि बच्चन रवा से सीखी और ए पर ध्यान ना दी। हो सक

अमिताभ बच्चन के साइकिल चलावे के सिखाई, बाहरी खेल कूद के प्रेरित करी, जेकरा चलते उनका शारीरिक विकास बेहतर हुई। ऐसे कहे के मतलब देखें ई बा कि निश्चित तौर पर स्मार्टफोन से बच्चन के बचावल जरूरी बा। अगर नहीं की बचावत आवे वाला समय में बच्चन बर्बाद हो जिए सन। अगर उसे भी दिक्कत बा तो गेम जैसे लीडो भइल, शतरंज भइल, इस तरह के वहनी में उत्साह भरी कि यह पर सक्रिय रूप से वहनी के जानकारी ल सन। इस तरह से स्मार्टफोन के लत के हमने के छुड़ा सकत बने जा। और थोड़ा सा प्यार बच्चन से करी कि बेटा इस समय जोन बा हमने के इस तरह बच जाए के बा, और आगे हमने के निश्चित बा कि मौसम जोन आज बा विज्ञान से पूर्वानुमान चल रहा बा कि 23 से 27 मई के दौरान 2 दिन जिला में 1 या 2 स्थान पर लू चले के संभावना बढ़ुए, बाद में 2 स्थान पर मेघ गर्जन बर्बाद 50 से 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार से हवा चले के बाद हल्का बारिश भी होके के संभावना बा। अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री के आसपास रहे के अनुमान बा। और यही के साथ साथ देखिए समय और आगे चला चला सब श्रोता भाई बहन के जगत भाई के नमस्कार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम गांव घर, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे देशवा फिल्म का ये गीत प्रभाकर पांडे की आवाज़ में। आशुतोष सिंह के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आशुतोष सिंह ने ही। अब आइए सुनते हैं विदाई फिल्म का ये गीत उदित नारायण और इंदु सोनाली की आवाज़ों में।

0: विदाई फिल्म का ये गीत सुनने के बाद अब आइए सुनते हैं प्रतिज्ञा फिल्म का एक गीत कल्पना पटवारी और उदित नारायण की आवाजों में। लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता असुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार।
1: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी आपन बिजनेस के प्रसार।
2: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान।
1: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
2: डायल करें 8700014242।
1: नंबर फिर लिखी 8700014242।

0: पटवारी के गाए इस बलम बड़ा नादान फिल्म के गाने के साथ ही भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ गीत यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आज बुधवार का दिन है और लेकर आ गया पैरा मेडिकल है पारस। जी हां, पैरा मेडिकल है पारस में हम बातें करते हैं हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद रोजगार की भी स्वरोजगार की भी। अगर जो रोजगार है तो सरकारी क्षेत्र के रोजगार और निजी क्षेत्र के रोजगार की भी बात करते हैं। कहते हैं कि कोविड के बाद से इतना वाइब्रेंट हो चुका है हेल्थ सेक्टर कि पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है या कमाना शुरू कर दिया जाता है। पैरामेडिकल है पारस हम लेकर आते हैं राज्य की एक विशिष्ट संस्था है पैरामेडिकल की, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है। उनकी तरफ से उनका मानना है कि बिहार के अंतिम युवा तक बातें पहुंच जानी चाहिए कि अगर वो हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए रोजगार ले लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम नंबर बताते हैं इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप चाहे तो डायल कर सकते हैं। नंबर नोट करें 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी हम हाँ जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में बताइए।
3: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं। हाँ। बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है।
2: जानकारियों का अभाव है।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
2: जी
3: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
2: जी।
3: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
2: जी।
3: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
2: जी,
3: है
2: जी।
3: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है। और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
2: जी, एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
3: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
2: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
3: बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा। और जहां तक और बढ़ ही रही है, मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
2: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
3: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
2: जानकारी

0: नौकरी दीजिए, युवा साथियों को थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
0: जी।
1: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
0: हाँ।
1: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
0: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
1: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
0: जी।
1: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो एक सीट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
0: जी।
1: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे।
0: सही।
1: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जवाब से आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
0: सही बात।
1: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
0: सही बात है।
1: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय हो जाए, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
0: बिल्कुल नहीं।
1: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
0: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश और डॉक्टर NP प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों, आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर NP प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर

0: नोट करें 9155558888 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी,
1: फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
2: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
2: 2023 से
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
2: जी,
1: में
2: जी, जी।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
2: बिल्कुल, मैं तो पहले ही इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता, हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं और लोग और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
2: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो वो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए, उसकी इच्छा कहीं भी। नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह हैं, डॉक्टर साहब ने कहा, इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
2: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
1: क्या पढ़ाई होती है?
2: दोनों में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ समान है,
1: हाँ।
2: उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया ऐसा समझिए। ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
2: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
1: ऑक्यूपेशन व्यवसाय
2: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन,
2: हाँ, जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
1: अच्छा,
2: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिसको वो समझाता है, बताता है और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल आज जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लाइक है उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
0: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी, हाँ, जो है ना उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है, जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं 9155558888 9155558888, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए और इसे कहीं से विज्ञापन नहीं समझिए, ये सहूलियत है आप युवाओं के लिए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम

मेडिकल है पारस। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हुआ चाहते हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

लैला मजनू फिल्म के इस गीत को सुनने के बाद अब आइए स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर एक नज़र डालते हैं। श्रोता दोस्तों, भीषण गर्मी के साथ लू से आमजनों के बचाव एवं राहत हेतु जिला प्रशासन रोहतास एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग लगातार प्रयासरत है एवं तत्पर है। रोहतास जिला अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित की जा रही कुल 3158 अदद योजनाओं से नियमित जलापूर्ति की जा रही है। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार किसी प्रकार का शिकायत समस्या होने पर 24 से 72 घंटों में इसका त्वरित निष्पादन कर योजना को क्रियाशील करने का प्रयास किया जा रहा है। आज दिनांक 27/5/2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास के द्वारा जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दैनिक साक्षात्कार किया गया। उक्त दैनिक साक्षात्कार के क्रम में 8 व्यक्तियों के द्वारा आवेदन पत्र शिकायत पत्र दिया गया। जिला पदाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित जाँच एवं नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया। ईद उल अजहा बकरीद पर्व को रोहतास जिले में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण एवं विधि व्यवस्था के अनुरूप संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह, असामाजिक गतिविधि अथवा सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रशासनिक एवं पुलिस स्तर पर व्यापक तैयारी की जा रही है। जिले के सभी अनुमंडलों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से तैयारियों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी रोहतास ने कहा कि ईद उल अजहा बकरीद पर्व 28 से 30 मई के बीच मनाए जाने की संभावना है। यह पर्व जिले में पूरी शांति, सद्भाव एवं आपसी भाईचारे के वातावरण में संपन्न कराया जाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अब इसी के साथ गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:25 हुआ चाहते हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और ज़िले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
5: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का

0: सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्थक पीडीएस को जारी रखने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार रैयती भूमि क्रय नीति को मिली स्वीकृति। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। चुनाव आयोग के अधिकारों को बताया संवैधानिक। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को वैध करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक अनिवार्यताओं की प्रक्रिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा एसआईआर पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। श्री कुमार पटना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
4: चाहे बिहार में एसआईआर हो या पश्चिम बंगाल, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दी। अब विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को अपना नजरिया साफ करना चाहिए। जनता में जो आप भ्रम पैदा कर रहे थे, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब नजरिया साफ करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध कहा है, माफी मांगिए इस देश की जनता से।
1: इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में शुरू किए गए एसआईआर के निर्णय को बरकरार रखने के फैसले को सही ठहराया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एसआईआर को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया था।
5: एसआईआर अधिकार है चुनाव आयोग का। ये लोग क्या चाहते थे, डबल डिजिट रहे, मृतक का नाम रहे, रोहिंग्या बांग्लादेशी का नाम रहे, घुसपैठिए का नाम रहे, परमानेंट शिफ्टेड का नाम रहे। एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था बिहार में और राहुल गांधी और विपक्ष से सुप्रास साफ कर दिया जनता ने। और अधिकार है उच्चतम

0: न्यायालय ने यही कहा है कि चुनाव आयोग का अधिकार है ऐसा, यार वो कर रही है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सड़क परियोजनाओं, रोजगार, स्वास्थ्य और न्यायिक ढांचे से जुड़े कुल 27 एजेंडों को स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार ने लोकहित की परियोजनाओं के लिए नई भूमि नीति के तहत बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को स्वीकृति मिली है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने पर अब लोकहित परियोजनाओं के लिए रैयती भूमि आपसी सहमति से खरीदी जाएगी।
2: बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत रैयत से सीधे भी भूमि खरीदी जा सकती है एक्विजिशन प्रक्रिया में गए बगैर, और इसमें जो सामान्यतः प्राप्त होता है उसे 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया। यह अपेक्षा है कि इससे भूमि विभिन्न उद्योगों तथा विकास कार्यों के लिए प्राप्त करने में सहूलियत होगी।
1: बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए राज्यकर्मियों, पेंशनधारियों और जनप्रतिनिधियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पीएमसीएच के हड्डी रोग विभाग में 39 नए पदों के साथ एक स्वतंत्र स्पाइन सब स्पेशलिटी यूनिट स्थापित की जाएगी। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए श्रम संसाधन विभाग का नाम अब युवा रोजगार कौशल विभाग कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आज पटना में जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत बिरसा लिव्स इन न्यू भारत थीम्स के तहत छात्रवृत्ति लाभुकों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 1,04,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिला है। वहीं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति से इस वर्ष 1,41,000 अनुसूचित जनजाति के छात्र लाभान्वित हुए हैं।
3: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है इस प्रदेश में लगभग चाहे वो एससी एसटी वर्ग के छात्र हैं 1,04,000 छात्रों को हम लोगों ने दिया, जिसमें से 4,155 जनजाति हमारे छात्र हैं उनको इससे देने का काम किया जाए। उसी तरह प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति लगभग 20,00,000 छात्रों को दिया जाना, उसमें से 1,41,000 सिर्फ जनजाति छात्र छात्राएं हैं जिनको इसके माध्यम से देने का काम किया जाए।
1: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने दाखिल खारिज, ई मापी और अभियान बसेरा के लंबित मामलों का तेजी से निपटारे का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि 15 दिनों के बाद एक बार फिर से कार्य निष्पादन की समीक्षा होगी। श्री जायसवाल ने किसान पंजीकरण अभियान को गति देने के लिए परिमार्जन मामलों के शीघ्र निष्पादन का भी निर्देश दिया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। कुर्बानी का त्योहार बकरीद कल मनाया जाएगा। बकरीद के त्योहार को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए सभी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को असामाजिक तत्वों पर नजर रखने, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। DGP विनय कुमार ने कहा है कि दंगा नियंत्रण वाहन संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती करेंगे। STF के पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने कहा है कि कल सुबह 4 बजे से पुलिस अधिकारी फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे। सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामैत ने आज जिले के ललित ग्राम में रेलवे वाशिंग पिट के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 80 करोड़ रुपए

0: लागत से बनने वाले वाशिंग पिट के निर्माण से सुपौल सहित कोसी क्षेत्र में रेल सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र में भिंडी तोड़ने के विवाद में महिला की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनवरिया पंचायत के मढ़िया गांव में जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। इस घटना में एक एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पटना जिले के कदमकुआं थाना क्षेत्र के नाला रोड स्थित एक 2 मंजिला मकान से युवक ने छलांग लगा दी। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के जानीपुर ढाला स्थित पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का सितम जारी है। राज्य का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। गर्मी से बचने के लिए राज्य सरकार की ओर से जागरूकता अभियान के साथ विभिन्न जगहों पर पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बढ़ती गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से विभिन्न जिलों में शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। गर्मी से बचने के लिए सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को बिना काम दोपहर बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि गर्मी में बच्चों पर विशेष ध्यान दें। गर्मी को देखते हुए सरकार ने राज्य के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की कक्षा के संचालन पर रोक लगा दी है, जबकि वर्ग 9 से 10 तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 11 बजे तक ही किया जा रहा है। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
0: प्रदेश के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। हालांकि दक्षिण बिहार का तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के दक्षिण मध्य जिलों के कुछ भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इधर 43.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ आज कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर बारिश के दौरान मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआ बाग स्थित नया टोला में दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सुपौल जिले के बीरपुर स्थित हृदय नगर में एक व्यक्ति की वज्रपात से मौत हो गई। आंधी बारिश और ओलावृष्टि के कारण विभिन्न जिलों में पेड़ और बिजली के पोल गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इधर तेज आंधी तूफान से आकाशवाणी भागलपुर का मीडियम वेव टावर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया, इससे प्रसारण प्रभावित हुआ है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। 19,838 सिपाही पदों के लिए हुई परीक्षा में 12,509 पुरुष, 7,312 महिलाएं और 17 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2026 की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार यह परीक्षा 11 जून को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 7 से 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्थक पीडीएस को जारी रखने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार रैयती भूमि क्रय नीति को मिली स्वीकृति। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। चुनाव आयोग के अधिकारों को बताया संवैधानिक। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बांका जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विदु शेखर।
1: नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत अक्टूबर दिसंबर 2025 की त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग में बांका जिले ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं जिले ने आधारभूत संरचना सेक्टर में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। जिले की यह सफलता स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा बुनियादी सुविधाओं में किए गए सतत प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है। जिला प्रशासन ने इसका श्रेय सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मियों, आकांक्षी प्रखंड फेलो और NIC बांका की टीम को दिया है। इधर जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला के निर्देश पर जिले में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि सभी गैस एजेंसियों और प्रमुख स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 10 गैस एजेंसियों और 34 महत्वपूर्ण स्थलों की जांच की जा चुकी है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए समरणालय में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। बीते दिनों आए चक्रवाती आंधी तूफान से जिले के लोग परेशान दिखे। रजौन में तेज हवा के कारण एक दर्जन से अधिक पेड़ टूटकर गिर गए, जबकि 13 बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके कारण कई गांवों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप रही। बिजली आपूर्ति बाधित होने से पेयजल संकट भी गहरा गया है। दूसरी ओर धोरैया प्रखंड क्षेत्र में तेज आंधी ने कई परिवारों की मुश्किल बढ़ा दी। जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणा घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणक उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय के राष्ट्र व्यापी अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे

0: पहले के तहत बांका जिले के 6 प्रखंडों में 23, 21 से 23 मई तक 64 आदि सेवा केंद्रों पर विशेष जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करना तथा लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। शिविर में ग्रामीणों का भारी उत्साह देखने को मिला और विभिन्न काउंटरों पर लगी लोगों की भीड़ उमड़ी रही। शिविर के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं सहित अन्य योजनाओं से संबंधित कुल 3,392 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,848 का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 1,807 स्किल सेल एनीमिया जांच, 297 टीवी जांच, टीकाकरण तथा 213 आयुष्मान भारत कार्ड आवेदनों का त्वरित निष्पादन भी किया। जिले में महिला और बाल विकास निगम द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बाल विवाह रोकथाम और निषेध विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांका सदर प्रखंड अंतर्गत दक्षिणी कटेली पंचायत के ग्राम दुधिया तरी स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत बांका जिले में नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में समरणालय स्थित मिनी सभागार में आम जनों की समस्याओं की सुनवाई की जा रही है।
1: अभी आप सुन रहे थे बांका जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विदु शेखर।
2: एफएमएन के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फोन इन फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम हेलो मन पसंद। हेलो मन पसंद में श्रोता दोस्तों आपकी बातचीत के साथ आपकी ख्वाहिशों को आप तक पहुंचाएं। इससे पहले सुनिए कुछ संदेश।
3: मंगल भवन मंगलहारी
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं कुसुम कौर आपकी रेडियो दोस्त लेकर हाजिर हूँ आप सभी का चहेता कार्यक्रम हेलो मनपसंद। तो फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई है, लेते हैं कार्यक्रम का पहला कॉल। हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद
0: जी, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं राजनगर मधुबनी से ओल्ड लिसनर गुरु गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्ता जी बोल रहा हूँ। मैडम
0: गुप्तेश्वर प्रसाद जी, कैसे हैं आप?
1: बस स्वस्थ हो, आप लोग के दया से 73 साल हो रहा है।
0: अच्छा, अरे वाह, तब तो आप फिट हैं अभी की थोड़ी से अस्वस्थ है।
1: मैडम आप लोग के आशीर्वाद से
0: जी, तो बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं सुनना ये चाहता हूँ कि गर्मी काफी है
0: जी,
1: समझे ना।
0: जी जी
1: मैं कुछ लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: आप धूप में मत निकला करे बेवजह।
0: जी
1: निकलते वक्त पानी का बोतल रख के, कपड़ा रख के, ढीला ढाला कपड़ा पहने, बच्चों को भी थोड़ा सा सावधानी बरते।
0: जी
1: और मेरा ये गाना है कि धूप में निकला न करो रूप बिगड़ा नहीं गिरफ्तार फिल्म के।
0: जी, आपके संदेश हमारे श्रोतागण तक जरूर पहुंचेंगे। और लीजिए, सुनिए, आपको हम सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: जी,
0: जी, बताएं क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम गुड्डू कुमार है।
0: गुड्डू कुमार जी। गुड्डू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: शिवसागर के बगल में घटकन गांव है।
0: शिवसागर के बगल में घटकन गांव है। तो बताइए गर्मी कैसी है वहाँ पर?
1: अरे गर्मी तो बहुत पड़ रही है। आज
0: जी।
1: 1 साल से फोन लगा रहा है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है।
0: जी, आप तो पता ही है आपको कि बहुत सारे हमारे कॉल आते रहते हैं, तो इसमें बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं उनका कॉल छूट जाता है। देखिए, मगर 1 साल के बाद आपका कॉल आया तो सही। हाँ जी। तो बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: दिलवाले फिल्म का कोई गाना?
0: जी, तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो मनपसंद सर,
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनील है।
0: जी सुनील जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हम ग्राम जमुआवा, थाना दाऊदनगर, जिला
0: दाऊदनगर
1: औरंगाबाद।
0: जी, तो बताएं वहाँ पर गर्मी कैसी है? जी, तो गर्मी में बच कर रहे हो। और बताइए, और कौन कौन है आपके परिवार में? जी, तो सुनील जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी तो अभी तो बहुत परेशानी होती होगी आप लोगों को खेती बाड़ी करने में। जी, अच्छा, आंध्रा नक्षत्र में आप लोग धान की बुआई करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि आप ही किस जब जब तक किसान अन्न ना कमाएंगे तो हम लोग कैसे खाएंगे। तो आप लोगों तहे दिल से हम सारे श्रोता जितने हैं सबको ही आपको शुक्रिया।

करते हैं कि आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जिसकी वजह से हमें अनाज मिलता है। तो अब बताएं कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। जी, हम आपको आपके पसंद का ये गीत जरूर सुनवाएंगे।

0: हेलो मनपसंद,
1: चौकट से आजा तेरी रवानी लिख दूं, जिंदगी के दो चार फलसफे लिए तेरी कहानी लिख दूं। तब
0: अरे वाह, बहुत
1: तक
0: अच्छा।
1: जिंदगी से दूर दूर रहोगे राधे, क्या पता जिंदगी के शाम हो जाए। राधे कुमार विद्या वाणी लिख दूं, गोकुल चौक गंग जला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी। आपको मेरा सादर नमस्कार और सुनने वाले तमाम दोस्तों को भी मेरा सादर नमस्कार।
0: आपको भी राधे कुमार विद्यार्थी जी बहुत बहुत नमस्कार, और आपने इतने अच्छे जो शायरी बोली है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई बहुत ही शानदार रही आपकी शायरी। तो बताइए क्या करते हैं आप? आप तो हमारे
1: मैं
0: हाँ,
1: खुद लिखता हूँ।
0: ओके, बहुत अच्छा लिखा है आपने, ये आपने ही लिखा है ना?
1: जी जी

0: बहुत अच्छा लिखे।
1: कि आगे मेरी और आपकी आग फास्ट आगे बढ़े। मैं
0: सिर्फ लिखते ही है कि और भी कुछ करते हैं?
1: और 75 बसंत मैंने देख लिए हैं,
0: अच्छा
1: और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं 1964 से रेडियो से जुड़ा हूँ।
0: जी, आप हमारे नियमित श्रोता है। आपके पत्र, आपके मैसेज हमें हमेशा आते रहते हैं, और आपका नाम भी हम लोगों को हमेशा जहन में रहता है। तो बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: दुर्रानी और शमशाह बेगम ने गाया है,
0: जी, फिल्म का नाम बताएं।
1: लेकिन बदायूनी ने इसे लिखा है और नौशाद साहब ने इसका संगीत निर्देशन किया है। फिल्म
0: जी
1: का नाम है दीदार।
0: जी
1: हमारा नाम भी लिख लो मोहब्बत करने वालों में।
0: चलिए ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: सातारा
0: जी, नाम बताइए।
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ।
0: सुकाराम जाधव जी, तो बताइए क्या हाल है वहां पर।

0: कुल में अभी गर्मी बहुत है हमारे इधर, 36-37 तापमान है
1: जी। क्या करते हैं आप?
0: मेरा वर्षा में वेल्डिंग काम करते हैं, घर के दरवाजे ग्रिल चूल्हे बनाते हैं।
1: तो सुखाराम जी, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर कुछ विशेष घूमने की जगह हो या फिर कुछ ऐसा हो जो मतलब ऐतिहासिक हो या फिर देखने लायक हो, कुछ ऐसा बताइए आप अपने शहर के बारे में।
0: हमारे गांव से करीबन 2-3 किलोमीटर एक पहाड़ है, पहाड़ पर महादेव जी का मंदिर है।
1: ओके।
0: बहुत लोग आते हैं उधर, दूर दूर से लोग आते हैं।
1: अच्छा, तब तो बहुत
0: अच्छा। पुरानी मंदिर है वो, जो ढांचा है वो बहुत अच्छा है।
1: अच्छा, तो आपको पता है क्या उसके इतिहास क्या है?

0: हमारे गांव से करीबन 2-3 किलोमीटर एक पहाड़ है, पहाड़ पर महादेव जी का मंदिर है। बहुत
1: ओके,
0: लोग आते हैं उधर, दूर दूर से लोग आते हैं
1: अच्छा
0: देखने के लिए। बहुत
1: तब तो बहुत अच्छा।
0: पुरानी मंदिर है वो, कि जो ढांचा है वो बहुत अच्छा है वो।
1: अच्छा, तो आपको पता है क्या उसके इतिहास क्या है?
0: इतिहास मालूम नहीं, लेकिन करीबन 300-400 साल का पुराना मंदिर है वो।
1: बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें दिया है।
0: और दूसरी एक बात है, हमारे गांव में दो नदियां है,
1: जी
0: और दोनों एक है कृष्णा एक है कोयना, और दोनों का आमने सामने संगम हो गया है।
1: अरे
0: वो
1: वाह,
0: पूरे देश में नहीं है वो संगम हो।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो जरूर आना पड़ेगा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर, है ना?
0: तो आपका अगर फोन करके आओ, हम सब दिखाएंगे आपको
1: जी
0: हमारा गांव। मेरा
1: जी तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
0: गांव मेरा देश,
1: बोल।
0: और गीत के बोले छोड़ दिया जाए क्या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, कुछ मित्रों के नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: हाँ बताइए
0: हाँ, सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: जी।
0: हमारे मित्र प्रियशा शेट्टी जी, कांताबाव रामगढ़े जी, विठल पवार जी, सचिन गाड़गे जी, किरण शिंदे जी, सुनील भुजे जी,
1: जी
0: विजय पाटिल सारोकर जी, धनंजय टेलर जी, रमेश जाधव जी, गौतम कोकाडे जी, विकास चेड़गे जी, श्रीकांत भंडारे जी, रमेश जाधव जी और उदय काले जी, हम सब एक सुनना चाहते हैं।
1: आप सभी को, आपके दोस्त को, आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो मनपसंद ने प्यार भरा नमस्कार
0: जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: जी। मैम आप इतनी अच्छी हैं कि हम कह नहीं सकते, क्योंकि फोन मेरा लग गया, हम इतने अच्छे हो गए हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपना नाम बताइए पहले।
1: जी मैं मस्त कला तकिया मड़ियाओं जिला जौनपुर से जहमील अहमद शाह का दोस्त, मैं सुख कुमार प्रजापति करौता लोता वाराणसी यानी मैं उत्तर प्रदेश काशी नगरी बनारस यूपी 65 से बात कर रहा। सीधा कॉल मेरी सासाराम आकाशवाणी केंद्र में, मैं इनसे पहली मतवा बातचीत करी। प्यार भरा नमस्कार।
0: जी है, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। यानी पहली बार आपने ये कॉल आपने लगाया है, पहले भी आपने ट्राई किया था क्या?
1: जी मैंने कई मतवा मेरी कॉल लगी, पहली मतवा आपसे बात हो रही है, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ।
0: जी, आप मेरा नाम जिस दिन प्रसारण होगा उस दिन जरूर सुन लीजिएगा। ओके
1: ओ हम सिलाई करते रहते हैं प्रोग्राम, सभी केंद्र का आकाशवाणी केंद्र का हम लोग सुनते रहते हैं।
0: जी, तो आप सिलाई का काम करते हैं, अच्छी बात है। तो आपको कौन सा गीत सुनवाया जाए आज?
1: सुनाइए, अगर भोजपुरी चला सकती है तो घर गृहस्थी के चलाइए।
0: घर गृहस्थी फिल्म का नाम है।
1: हाँ, घर गृहस्थी उसमें गाना है,
0: जी,
1: जेठ महीनवा में तनी।
0: हम आपको सुनवाएंगे आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो
0: जी, बताइए आपका क्या नाम है?
1: मेरा नाम तो आप जानते हैं, मैं सराहा रेडियो श्रोता संतापुर मोरबा से भाई कारी राय कारी बोल रहा हूँ।
0: कारी राय कारी जी, आपसे बात करके अच्छा लगा क्योंकि आप हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: जी,
0: तो आप बताइए, घर परिवार में और कौन कौन है?
1: पत्नी तो 2 साल पहले डेथ कर गया है, हानि से कर गया है। घर में एक लड़का है, 4 बच्चे थे पहले से, 4 लड़की, 4 लड़की के शादी भी कर चुके हैं।
0: परिवार हंसता खेलता रहे, यही हम सबकी दुआ है। तो ये बताइए, क्या करते हैं आप?
1: हम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में कार्यरत थे। 11 अगस्त में यहाँ सेवा निर्मित हो गए हैं, तब से घर ही पर हैं। 2011 में रिटायर कर गए।
0: 2011 में, तो उसके बाद अब आप घर पे ही रहते हैं।
1: जी, पत्र भेजना है आप लोग, बहुत हरियाली करते हैं आप लोग, इससे मैं कुछ शिकायत नहीं है, बहुत प्यार करते हैं आप लोग।
0: चलिए
1: दफा कर छूट जाना, लेकिन
0: जी,
1: बेहतर रहता हूँ।
0: कौन सा गीत सुनवाया जाए अभी?
1: वो सुना दिए फिल्म कोरा कागज का, किशोर कुमार के गया हुआ गाना है,
0: जी,
1: मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।
0: बहुत अच्छा गीत है और हम आपको सुनवाएंगे आपके पसंद का
1: और
0: ये
1: कुछ मित्र
0: गीत।
1: हैं जो कि खास मित्र हैं, जैसे नारायण स्टेट के हैं मिश्रा साहब,
0: जी
1: राजनगर के हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, सासाराम के सहरसा के हैं राजीव कुमार विद्यार्थी।
0: ठीक है, आप सभी को भी नमस्ते और आप सभी को सुनवाया जाएगा आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो मनपसंद, नमस्ते
0: जी। नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: जी आलमगंज से शहजादी खातून बोल रही हूँ।
0: शहजादी जी, कैसी हैं आप?
1: हम ठीक हैं, और सब अपना बताइए।
0: हाँ, हम और हमारा आकाशवाणी का परिवार भी सही है। और बताइए, अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, कैसे चल रहा है?
1: हाँ, इन दिनों तो गर्मी के तापमान ज़्यादा ही बहुत ही जा रही है
0: जी
1: रोहतास में।
0: जी जी अच्छा, ये बताइए कि आपकी साइड में भी पानी की समस्या है क्या?
1: पानी पेयजल के तो मेरा थोड़ा दिक्कत हो रहा है इधर मोहल्ले में।
0: जी जी जी और बताइए, परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में तो पापा है, बाजी है, हम है, भैया भाभी, चार गो भतीजी, तीन गो है, दो गो भतीजे हैं।
0: ओके, यानी अभी आपकी शादी नहीं हुई है।
1: मैं ब्लैक हूँ,
0: देख नहीं पाती हैं।
1: नहीं
0: कैसे आपने फोन लगाया फिर?
1: वैसे नंबर याद है तो मतलब फोन लगा देते हैं।
0: अच्छा, तो शहजादी जी ये बताइए कि जब आप देख नहीं पाती हैं तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को मतलब कैसे काम कैसे कर पाती हैं?
1: सब करते हैं,
0: अरे
1: मेरा
0: वाह।
1: सब करते हैं, सारा काम करते हैं, आदत हो गया है घर में रहते रहते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, और मानना पड़ेगा आपके उसको भी, कॉन्फिडेंट को, कि आप सब काम कर लेती हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या होता है ना, कि कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो अगर आपने जीत लिया तो सब काम हो गई, अगर हार गई तो हार गई।
1: हाँ जी, सब काम कर लेती हूँ, खाना वाना सब बनाती हूँ, पौधान पैर पोछना सब बना लेती हूँ।
0: तो आपसे तो सबको, हम लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात भी करके। आज एक नई एनर्जी मिली मुझे कि आप लोग भी ऐसा कर सकती हैं। बहुत अच्छी बात है। ये बताइए शहजादी जी, कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: हम बॉर्डर फिल्म का गाना सुनना चाह रहे हैं।
0: हाँ, कौन सा गाना सुनवा दिया जाए बॉर्डर का?
1: कोई कोई भी गाना सुनवा दीजिएगा।
0: चलिए ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो
0: हेलो मनपसंद जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मनपसंद, मैं
0: जी नाम आप फिर से एक बार बता दे।
1: विक्रमगंज
0: ये तो आप बताइए, क्या करते हैं आप विक्रमगंज में? जी
1: पुनर्नवा
0: चलिए, तो कौन सा आपका पसंदीदा कार्यक्रम है आपको रेडियो में?
1: हम सब सभी गाना सुनते हैं आपका, ईमान मसन भी सुनते हैं आपको, रात को 8:50 में सुबह को भी सुनते हैं।
0: तो आप सुबह में नमस्ते रोहतास सुनते हैं, जिसमें रोहतास जिला के बारे में? जी तो इस बार आपकी क्या फरमाइश है?
1: जिसकी
0: जी, तो चलिए आपको हम सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

इसी गाने के साथ आज का हेलो मनपसंद कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप शनिवार संध्या 7:50 से सुन पाएंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक बुधवार को पूर्वाहन के 11 से 12 के बीच की जाती है। हमारा फोन नंबर है 0618422110। श्रोताओं से एक अनुरोध ये भी है कि हमारे जिन श्रोताओं के फोन इस सप्ताह लगे या हमने उनकी फरमाइश पूरी कर दी है, कृपया वो अगली बार फोन ना करें, ताकि हमारे नए श्रोताओं से भी हम बात कर सके और उनकी फरमाइश पूरी कर सके। नमस्कार।

0: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो मनपसंद, आकाशवाणी का ये सासाराम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 हुआ चाहते हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए

0: सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित

0: करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और

उन पर वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारत। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। हमारे अगले कार्यक्रम की कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय गायन पर आधारित कार्यक्रम सूर्य सौरभ। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं पंडित निखिल बनर्जी को, इनसे इनका सितार वादन। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्यामल बोस और राग है पीलू।

पंडित निखिल बनर्जी से अभी आप सुन रहे थे उनका सितार वादन। इसी के साथ सुर सौरभ कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: मस्ती बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

0: को चूमे ओ हो हम जब चले तू।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हां कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की मां का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह,

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला तुम गाने में हमको हराया,
2: हाँ
1: तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम हमारा कोपड़ी तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी? आमा बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो एक चौकरा एक चौकरे गार्डन में घूमता है तो फिर कबाब में अड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है, ये कसरत का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो यो यो।
0: सन 1965 फिल्म

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल रॉय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी।

सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की ये फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा। सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए। सन 1976 नागिन। सन 1979 जानी दुश्मन। और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला

0: सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया, लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई का प्रसारण विविध भारती के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स यानी गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग।

सबसे पीछे हम खड़े, ये गीत अभी आप सुन रहे थे जिसे हमने लिया था आओ विश करें एल्बम से, कुणाल गंजेवाला की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। गीतकार थे अनूप तिवारी। और अब आइए आपको हम सुनवाएं। अब के बरस एल्बम का एक गीत सुनीता राव की आवाज़ है, श्याम अनुरागी हैं गीतकार और आनंद राज आनंद हैं संगीतकार।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: विज्ञापन से पहले अभी आप सुन रहे थे आबिदा एल्बम का ये गीत आबिदा प्रवीण की आवाज में, और अब इसी के साथ गैर फिल्मी हिंदी गानों का ये कार्यक्रम रसरंग यहीं

दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहेंगे। गले में खराश है, आप महसूस कर रहे होंगे, हम भी महसूस कर रहे हैं, हम तो समझ ही रहे हैं। अगर आपको महसूस के साथ कोई तकलीफ भी हो रही हो तो हम उसके लिए आपसे बहुत क्षमा चाहते हैं। और अब आइए शुरू करते हैं खूबसूरत सफ़र, जिसे आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, चित्रपट तराने। श्रोता दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में बातें करेंगे रात की, चांद की, खामोश की, और फिर मोहब्बत और प्यार की। दोस्तों, रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती, यह सुकून, खामोशी और ख्वाबों का संसार भी होती है। दिन की भाग दौड़ के बाद रात इंसान को खुद से मिलने का मौका देती है। चांद की हल्की रोशनी और तारों की चमक दिल को एक अलग ही शांति देती है। कुछ लोगों के लिए रात यादों की किताब है, तो कुछ लोगों के लिए नए सपनों की शुरुआत। कहने का मतलब दोस्तों कि रात भर चांद भी तन्हा सा नजर आता रहा, रात भर चांद भी तन्हा सा नजर आता रहा, तेरी यादों की दिया दिल में यूं जलता रहा। खामोश हवाओं ने जब छेड़ी तेरी बात, मेरा दिल पूरी रात बस तुझे ही गुनगुनाता रहा।

दिल एक मंदिर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी शंकर जय किशन ने।

दोस्तों, चांद सदियों से इंसान की कल्पना, प्रेम और रहस्य का प्रतीक रहा है। रात के अंधेरे में उसकी ठंडी और शांत रोशनी मन को सुकून देती है। वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जो समुद्र की लहरों और पृथ्वी के वातावरण पर भी प्रभाव डालता है। लेकिन हाँ, साहित्यकार और साहित्य या फिर कविता में चांद को सुंदरता, प्रेम, उम्मीद और तन्हाई का साथी माना गया है। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब लिख भेजा है कि चांद भी आज कुछ उदास सा लगता है, चांद भी आज कुछ उदास सा लगता है, तेरे बिना ये आकाश भी वीरान सा लगता है। जब जब चमकता है वो रात की बाहों में, तेरा चेहरा ही मुझे हर बार याद आता है।

लाखों में एक फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर और लता की आवाजें थी। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। दोस्तों, चांद हमेशा से इंसान की दीवानगी का हिस्सा रहा है। कभी वह किसी की मोहब्बत बन जाता है तो कभी तन्हाई का साथी। उसकी ठंडी रोशनी दिल के अंदर छुपे एहसासों को जगा देती है। शायद इसी वजह से लोग चांद को देखकर खो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक अजीब सी शांति भी है और एक मीठी सी बेचैनी भी। दीवानगी भी कुछ ऐसी ही होती है जो इंसान को हकीकत से दूर ले जाकर ख्वाबों में जीना सिखा देती है। दोस्तों, आज आपके साथ और इस सफर में कुछ हमें भी एहसास हो रहा है, कुछ यादें अल्फाज बनकर जवां पे आना चाहती है, तो लीजिए, सुन ही लीजिए। चांद को देखा तो फिर तेरा ख्याल आ गया, चांद को देखा तो फिर तेरा ख्याल आ गया, उसकी चांदनी में दिल थोड़ा संभल तो थोड़ा बिखर गया। ये कैसी दीवानगी है तेरे इश्क की, चांद भी आज मुझे तेरा हमसफर लग गया।

0: तो सही है मेरे को। अच्छा
1: पानी रहने दो।
0: ऐसे नहीं है ना।

0: अकाउंट खोलूँ कैसे? हाँ
1: जान से।
0: चुकू

नहीं किया है। चेक कर तो नहीं, छुत में नहीं किया, कांड में किया। निकला है बात, पट्टी निकली, ठीक है, धुल देना।

जो भी है सच सच बता।